नमस्कार, FM बैंड 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, सक संवत 1948 के श्रावण मास की 27वीं तिथि। तदनुसार आज दिनांक 18 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर इंटरनेट के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी आप हमें सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

सुबह 9:10 से आप सुनेंगे रामचरितमानस का, 9:20 से आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, 9:40 से आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश विश्नोई से पाइल्स फिशर फिस्टूला और सर्जरी विषय पर अशोक कुमार कोयल की बातचीत। इसके बाद में आप सुनेंगे चंद गजलें। 10:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम पुराने गाने पुराने जमाने के और 10:30 से आप सुन पाएंगे गाने नए तराने नए। 11:00 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम

युवाणी का समय रहेगा शाम 5 बजे से। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फोन करें गीत सुने। महिला जगत का समय रहेगा शाम 5:30 से 6:05 से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत लोकगीत और वचनों पर आधारित कार्यक्रम। माटी के स्वर का समय रहेगा शाम 6:20 से। किसान वाणी आप सुनेंगे शाम 7 बजे से और 7:30 से आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। एल्बम सॉन्ग सुनेंगे रात्रि 8 बजे से और 8:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम घूमर। लोक संगीत का कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ से।

9 बजे से आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम। 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का कार्यक्रम। ये तो थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

हम आकाशवाणी नागौर के चीनी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। राज्य विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। किसान रजिस्ट्री को एमएसपी पर होने वाली खरीद प्रक्रिया से जोड़ने की प्रक्रिया और उर्वरक वितरण प्रणाली को जल्द ही प्रदेश भर में लागू किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री पर 2 महीने के लिए रोक लगाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक विभिन्न देशों के बीच पर्यावरणीय सहयोग मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। साथ ही इस दौरान पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण विमर्श और चर्चाएं होंगी। भारत ने पहली बार देश के घास के मैदानों और अन्य खुले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों पर एक विशेष मार्गदर्शिका जारी की है। इसे मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन यूएनसीसीडी के कॉप 17 सत्र में जारी किया गया। मार्गदर्शिका में भारत के घास के मैदानों, सवाना मरुस्थलों और अन्य खुले प्राकृतिक क्षेत्रों की जैव विविधता, पारिस्थितिकी महत्व और सामाजिक आर्थिक उपयोगिता को रेखांकित किया गया है। सत्र में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि घास के मैदानों और झाड़ियों वाले क्षेत्रों को लंबे समय से पेड़ों की अनुपस्थिति के आधार पर सामान्यतः कमतर आंका जाता है, जबकि ये क्षेत्र जैव विविधता, आजीविका और जलवायु अनुकूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री यादव ने अजमेर में अपने बचपन का उल्लेख करते हुए पारंपरिक ओरण और गोचर क्षेत्रों को भी याद किया। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में ये बैठक विधानसभा में आज सुबह 11 बजे से आयोजित होगी। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बैठक में 16वीं विधानसभा के 6ठे सत्र को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी दलों के विधायकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक से आपसी संवाद, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलता है, साथ ही जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार होता है। प्रदेश में जिला क्रय विक्रय सहकारी समितियों की कार्य प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। इसमें कोटा पहले, कोटपूतली बहरो

0: दूसरे और चित्तौड़गढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में पर्वतसर पहले, खींवसर दूसरे और सांगोद तीसरे स्थान पर है। सहकारिता विभाग के शासन सचिव और रजिस्ट्रार डॉक्टर समित शर्मा ने सचिवालय में सहकारी संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने समितियों के गोदामों की जियो टैगिंग कराने और उनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय उत्पादों और मिलेट उत्पादों की बिक्री बढ़ाने को कहा। एक अन्य बैठक में सहकारिता विभाग द्वारा कॉनफेड के मेडिकल स्टोर खोलने का निर्णय लिया गया है। श्री शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अस्पताल आने वाले मरीजों को सभी जरूरी दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की दिशा में ये काम किया जा रहा है।
1: केंद्र पे दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी संख्या 690 है और इसको कालांतर में बढ़ा के हम 2000 इसकी संख्या करना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी अगर मरीज यहां आता है तो उसको सभी दवाइयां मिल जाए, उसको इधर उधर ना घूमना पड़े। और इसमें हमारी बाध्यता ये है कि जो जनऔषधि केंद्र से दवाइयां आती हैं वही दवाइयां हम यहां पे सेल करते हैं जो भारत सरकार से प्राप्त होती है। तो इसको पूरक के रूप में यहां पे कॉन्फेड की हम 6 शॉप्स विकसित कर रहे हैं, जहां पे जो दवाइयां यहां नहीं मिलती तो वहां से ले सकेगा, जिससे कि जो पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पूरा ऑनर हो सके और उसको सारी दवा मिल सके। इसमें हम ये भी पैकेज डेवलप कर रहे हैं कि जो ओल्ड एज के लिए जो मेडिसिन होती है उसका पैकेज भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो 400-500 रुपए में महीने भर की आपको डायबिटीज की भी, उसमें ब्लड प्रेशर की भी, कोलेस्ट्रॉल की भी, हार्ट की भी, वो सभी दवाइयां पूरे पैकेज के रूप में मिल सके, वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में कृषि क्षेत्र की डिजिटल मजबूती के लिए कृषि स्टैक को गति देने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय बैठक में कृषि स्टैक आयुक्तालय स्थापित करने और किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं में किसान आईडी अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को सहकारिता विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही किसान रजिस्ट्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया और उर्वरक वितरण प्रणाली को जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू करने पर सहमति बनी। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 87,44,000 किसानों की किसान रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। जयपुर जिले के प्रगतिशील किसान मोतीलाल को जैविक और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में किसान ब्रांड एम्बेसडर और ट्रेनर बनाया गया है। कृषि विभाग ने उनकी खेती के अनुभव और नवाचार को देखते हुए ये जिम्मेदारी दी है। अब वे प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की जानकारी देंगे। वे किसान प्रशिक्षण कार्यशालाओं और किसान संवाद कार्यक्रमों में अपने व्यावहारिक अनुभव साझा करेंगे। करौली जिले में जल संरक्षण और जल उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों को गति दी जा रही है। बारिश के पानी को सहेजने, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं हर घर जल पहल के तहत ग्रामीण परिवारों तक पेयजल पहुंचाने की दिशा में भी काम हो रहा है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जिले में 120 जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन संरचनाएं पूरी की गई हैं, 33 से अधिक पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण और 62 वाटर सेड विकास कार्य किए गए हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। जिले के पांचना बांध, गंभीर नदी और स्थानीय तालाब बांधों में जल संरक्षण से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की दिशा में किए जा रहे प्रयास ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को और मजबूत कर रहे हैं। बांके वैली शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रदेश में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री और वितरण पर 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने जुलाई और अगस्त में लिए गए नमूनों की जांच के बाद ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही असुरक्षित खाद्य पदार्थों के नमूने पाए जाने पर विभिन्न जिलों के 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। विभाग के अनुसार इनमें घी, मसाले, नमकीन, दूध, पनीर, मावा और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल शामिल हैं। विभाग ने आमजन से खाद्य पदार्थ खरीदते समय ब्रांड, बैच नंबर और

0: लेबल की जांच करने की अपील की है, साथ ही संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना देने का आग्रह किया गया है। राजस्थान पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाली साइबर ठगी से बचने के लिए आमजन को सतर्क किया है। पुलिस ने कहा है कि ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और फर्जी नोटिस या वारंट दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। पुलिस के अनुसार ऐसी कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती है और भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। राज्य विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। किसान रजिस्ट्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया और उर्वरक वितरण प्रणाली को जल्द ही प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री पर 2 महीने के लिए रोक लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चीनी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए आप और मिलकर सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना यह है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को यह भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

अभी आप और हम मिलकर सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, जहां कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अनूप जलोटा और हरिहरन की आवाजों में चंदभक्ति रचना है। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की FM फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती का ऑफिशियल मोबाइल ऐप News.on.ir, इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश विष्णु से पाइल्स फिशर फिस्टूला और सर्जरी विषय पर अशोक कुमार गोयल की बातचीत।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश विष्णोई, जो कि सीनियर सर्जन हैं JLN हॉस्पिटल नागौर में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार
2: जी। धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। आज का हमने जो विषय रखा है वो है पाइल्स फिशर पिस्तुला और सर्जरी। तो हम आज इन जो बीमारियां हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन हैं और बहुत मरीज इनके हम देखते सुनते हैं परिवार में और रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, समाज में, तो इनके बारे में थोड़ी हम जानकारी करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि कब इनमें सर्जरी की आवश्यकता होती है और क्या हम ध्यान रखें कि सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े, और अगर सर्जरी भी हुई है तो उसके बाद क्या ध्यान रखें कि फिर दोबारा से ये समस्या ना हो। तो सबसे पहले थोड़ी सी इन तीनों के बारे में, पाइल्स फिशर और पिस्टूला के बारे में एक सामान्य जानकारी हमारे श्रोताओं को आप दें कि क्या इनके लक्षण होते हैं और ये किस तरह की समस्याएं हैं, क्या इनके कारण हैं।
2: श्रोताओं, पाइल्स फिशर फिस्टूला ये सभी तीनों ही एक मल द्वार की बीमारियां हैं, और पाइल्स में मल द्वार में, जिनको एनल कैनाल कहते हैं, मल द्वार में जो वेन होती हैं, जो खून ले जाने वाली नाड़ियां होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, और सूजन आने की वजह से लेट अब मल त्यागते समय या उससे पहले ब्लीडिंग होती है, खून बहता है, और सामान्यतः इसमें दर्द की समस्याएं नहीं होती हैं। लेकिन फिशर में, मल द्वार में एक कट लग जाता है लंबे टाइम कब्ज रहने की वजह से, और फिशर में एक मल त्यागते टाइम समय एक दर्द होता है, तेज दर्द, जो 2-3 घंटे बाद तक भी रहता है। और फिस्टूला में मल द्वार के पास में एक नासूर बन जाता है जो अंदर मल द्वार के अंदर खुलता है और बाहर उसके चारों में स्किन में कहीं भी खुल जाता है, जिससे कभी मवाद आती है, कभी पानी आता है, और वो अपने आप घाव भरता नहीं है
1: जी।
2: ये तीनों बीमारियों में एक ही समस्या, ज्यादातर समस्या रहती है, लंबे टाइम से कब्ज का रहना
1: जी। लंबे समय तक कब्ज अगर किसी को रहती है तो ये समस्याएं हो सकती
2: समस्या हो सकती है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे कि जब इस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं तो उनमें, मतलब उपचार की अगर हम बात करें या उसके डायग्नोसिस की बात करें, तो वो डायग्नोसिस तो आप कर लेते हैं, उसमें विशेष कोई टेस्ट वगैरह शायद नहीं होते?
2: नहीं, डायग्नोसिस में फिशर और मसा पाइल्स में कोई विशेष मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनमें हम देख करके प्रोक्टोस्कोप से देख करके पता लगा लेते हैं। फिस्टूला भी पता लग जाता है देखने से, लेकिन फिस्टूला में अपन को कितना लंबा फिस्टूला है, अंदर कहाँ खुलता है, उसके लिए फिस्टूलोग्राम या MRI करानी पड़ती है
1: जी। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जो तीनों बीमारियां हैं, जैसा कि आपने बताया है कि इसका मुख्य कारण कब्ज रहना, लंबे समय तक कब्ज रहना है।
2: हाँ जी।
1: तो इसका जो उपचार की अगर हम बात करें तो सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े, पहले तो बात ये हो कि सर्जरी की आवश्यकता न पड़े, तो प्रारंभिक तौर पर जब लक्षण दिखाई दें वो आपके पास आए, तो थोड़ा सा चाहेंगे कि मेडिसिनल इसका क्या उपचार उपलब्ध है और फिर हम सर्जरी की बात करेंगे।
2: देखो, मेडिसिन में इसका उपचार है सॉफ्ट स्टूल होना चाहिए, कब्ज नहीं रहनी चाहिए, कब्ज मल त्यागते समय ज्यादा दबाव या जोर नहीं लगाना चाहिए, और उसके साथ साथ में ज्यादा फाइबर युक्त जो रेशेदार सब्जी खाएं, फ्रूट खाएं, पानी ज्यादा पिए, घूमें, वजन यदि ज़्यादा है तो वजन को कम करें, और कुछ दर्द निरोधक गोलियां हैं वो देते हैं, कुछ इनका गर्म पानी में शिकाव करने से दर्द कम होता है, और इसे यदि पाइल्स में ब्लीडिंग 5-4 दिन में रुक जाती है तो अपन कई दिन इसको इस ट्रीटमेंट में रख सकते हैं, और यदि ब्लीडिंग आपकी लगातार हो रही है तो एक सर्जरी जरूरत पड़ती है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, सर्जरी की अगर बात करें तो सर्जरी की क्या प्रक्रिया है इन तीनों बीमारियों में?
2: पाइल्स में

0: सर्जरी दो तीन तरह की होती है। एक तो इसमें जो पायल शुरुआती होता है तो उसमें एक बैंड लाइगेशन करते हैं, उस पर एक रिंग चढ़ा देते हैं रबर की।
1: जी
0: और यदि पायल्स एडवांस हो जाता है, थर्ड फोर्थ ग्रेड के हो जाते हैं, पायल्स बाहर आने लग जाते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तब तो एक होती है हेमरॉयडेक्टमी कहते हैं, जिसको पायल्स को काट करके उसको बैस से बांध देते हैं, वो
1: जी
0: भी सर्जरी होती है। दूसरी एक स्टेपलर सर्जरी होती है जिसको हेमरॉयडोपेक्सी कहते हैं, जिसमें स्टेपल्स हैं जो ब्लीडिंग करने वाली जो नाड़ियां हैं उनको को बांध देते हैं। दूसरा इसका इलाज कोएगुलेशन भी करते हैं, जिनको क्रायो सर्जरी कहते हैं। लेजर सर्जरी भी होती है,
1: जी
0: जिनके कुछ अपने नफे नुकसान अलग अलग हैं। किसी में पुनः पाइल्स की बीमारी होने की रेट ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। जैसे लेजर वाली है या हेमरॉयडोपेक्सी है, उनमें रिकवरी जल्दी होती है। ओपन जो हेमरॉयडेक्टमी करते हैं अपन, काट देते हैं, उसमें थोड़े रिकवरी में टाइम लगता है।
1: जी
0: और फिसर में, यदि फिसर ज़्यादा लंबे टाइम से आपको हील नहीं हो रहा है घाव, और पेशेंट को दर्द होता है, रूटीन लाइफ में उसको परेशानियाँ होती है, तो फिसर में भी एक तरह सर्जरी करते हैं, जिसके अपने एक लेटरल इंस्पेक्टोटोमी कहते हैं, जिसमें कट लगा के थोड़ा मल द्वार का रास्ता है उसको थोड़ा लूज कर देते हैं, जिससे
1: जी
0: घाव भर जाता है। लेकिन फिस्टुला का तो इलाज सर्जरी ही है, तो फिस्टुला में कई सिंपल होते हैं, कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें एक तीन ज़्यादा ट्रैक होती है, नासूर ज़्यादा होते हैं, कई नासूर होते हैं जो अंदर तक ऊपर तक खुलते हैं, तो उनकी एक लंबी सर्जरी होती है आजकल। उसमें कि ओपन फिस्टुलोटोमी बोलते हैं, जिसमें पूरा जो ट्रैक होती है, नासूर होता है, उसको पूरे को काट के हटाया जाता है, जिससे
1: जी
0: घाव भरने में 3-4 महीने तक का समय लग जाता है। दूसरा सिंपल जो फिस्टूला होता है, उसमें अपन लेजर से भी ट्रीटमेंट करते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? लोगों की जीवन शैली किस तरह की हो, लोग क्या ध्यान रखें, क्या प्रिकॉशन लें ताकि वो इन सब बीमारियों से बच सकें?
0: जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, मेनली हते कब्ज नहीं रहनी चाहिए, जिसके लिए आपको ज़्यादा फाइबर युक्त, रेशे युक्त भोजन करना चाहिए, हरी सब्जी लेनी चाहिए, सलाद लेना चाहिए, फ्रूट लेना चाहिए, पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा वेट कम करो, घूमना फिरना चालू करो, जिससे कि आपका आंतों का जो मोमेंट है वो अच्छा रहे। मेन यही है कि आपको कब्ज नहीं होनी चाहिए, और मल त्यागते समय ज़्यादा प्रेशर या जोर नहीं लगाए।
1: जी सॉफ्ट स्टूल हो, मतलब
0: हाँ,
1: आसानी से जो है
0: आसानी
1: वो
0: से
1: मल,
0: स्टूल पास हो
1: तो
0: जाए, मल
1: उस
0: त्याग दे।
1: जी तो उसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे या इस तरह की चीजें जो कि आपके मल को थोड़ा सॉफ्ट करने में मदद करें उस
0: घरेलू नुस्खे
1: जी
0: में आप इसबगोल ले सकते हो, सुबह शाम ले सकते हो, होल ग्रेन जो गेहूं के, ये जो मोठ के हैं, मूंग के हैं दाने, जो चने
1: जी
0: हैं, ये भिगो के खा सकते हो,
1: जी
0: पानी की मात्रा ले सकते हो ज़्यादा, आप
1: जी
0: पत्तेदार सब्जियां खा सकते हो।
1: जी कुल मिलाकर मतलब खान पान और अगर हम जीवन शैली का सही से पालन करें
0: मतलब
1: तो शायद हम इन
0: हाँ,
1: बीमारियों
0: काफ़ी
1: से
0: हद तक इन
1: बच सकते
0: बीमारियों
1: हैं।
0: से बच सकता
1: जी
0: है।
1: अब डॉक्टर साहब, सर्जरी की बात अभी हम कर रहे थे, तो जब इन सब परेशानियों में अगर सर्जरी कोई व्यक्ति करवाता है तो उसको सर्जरी की यहाँ तो क्या सुविधाएं हैं अपने नागौर में जेएलएन हॉस्पिटल में, और अगर सर्जरी करनी पड़े तो फिर उसके बाद उस व्यक्ति को क्या ध्यान रखना पड़ता है, या उसकी भी हर एक चीज के कुछ फायदे नुकसान होते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें या क्या समस्या फिर हो सकती है?
0: नहीं, नागौर जेलन अस्पताल में पाइल्स की, फिसर की, फिस्टुला की बेसिक सर्जरी सारी होती है, केवल लेजर वगैरह ये नहीं होती है,
1: जी
0: बाकी की सब सर्जरी होती है। यहाँ से किसी मरीज़ को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सर्जरी के बाद में कुछ सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस होती है, छोटी मोटी, लेकिन बड़ी कोई समस्या नहीं होती है। कईयों में वापस मसा या फिसर या फिस्टुला दोबारा हो जाता है वो, लेकिन वो बहुत कम लोगों में होता है, और वो दोबारा नहीं हो इसलिए रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ता है। और उसमें मेन यही है कि कब्ज नहीं रहे।
1: जी तो कुल मिलाकर मतलब अगर हम जैसा कि आपने बताया हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, पत्तेदार सब्जियां खाएं, रेशे युक्त भोजन लें, फल की लें, और जो इस तरह के ये जो साबुत अनाज हैं जैसे मूंग मोठ चना, इनको भिगो दिया और फिर सवेरे उनको कच्चे खा सकते हैं नाश्ते के रूप में, कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि हमें जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज ना हो,
0: कब्ज ना,
1: ये मूल बात हम
0: मूल
1: इसमें
0: ये
1: कह सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सुनने वाले

0: श्रोता हैं वो इन बीमारियों से अपना बचाव करेंगे, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया उन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि इस तरह की समस्या से वो बच सकें। फिर भी अगर उनको ये समस्या होती तो समय पर जैसे उनको लक्षण दिखाई दे अपने चिकित्सक से संपर्क करें, और यदि सर्जरी की आवश्यकता हो तो फिर जो सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका लाभ उठाएं।
1: हाँ जी, ये
0: आप आज हमारे स्टूडियो में आए डॉक्टर साहब और हमारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए में डॉक्टर ओम प्रकाश विष्णोई से पाइल्स फिशर और फिस्टूला और सर्जरी विषय पर अशोक कुमार कोयल की बातचीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचाला से बोल रहे हैं, आप सुनते हैं ये गजल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और प्यार हो गया, यह है कार्यक्रम की अगली फिल्म का नाम। इस गीत को आवाज़ दिया है नुसरत फतेह अली खां और उनका साथ दे रही है अलका याग्निक।

0: दोस्तों, अभी आप जो गीत सुन रहे थे वो फिल्म और प्यार हो गया से था। इस गीत को आवाज दी थी नुसरत फतेह अली खां और उनका साथ दे रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल और कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने पुराने जमाने के। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म सोल्जर से। इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक ने।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: दोस्तों, कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म फूल और कांटे से। इस गीत को आवाज़ दी अलका याग्निक और उनका साथ दे रहे हैं कुमार सानू।

दोस्तों तकनीकी कारण से गीत आप ठीक ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। चलिए कार्यक्रम का अगला गीत सुन लेते हैं, फिल्म कर्मा से। इस गीत को आवाज़ दी अनुराधा पोडवाल, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 MHz की FM फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ सुनी या यार इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के जरिए और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने ने तराने ने। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म यस बॉस के इस गीत से। इस गीत को आवाज़ दी है अभिजीत और उनका साथ दे रही है अलका याग्निक।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म कुली नंबर 1 से। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज है इस कार्यक्रम, इस गीत में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तुमसे अच्छा कौन है, यह है कार्यक्रम की अगली फिल्म का नाम, इस फिल्म का गीत अब हम सुनेंगे। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सानू ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: दोस्तों, आज शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहते हैं तो शाम 4:45 से 5:10 के बीच आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो के फोन नंबर है 240-168 और नागौर के STD कोड है 01582। अब कार्यक्रम गाने नए तराने नए को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। इस गीत को आवाज़ दिए कुमार सानू और उनका साथी रही है अलका याग्निक।

चलिए दोस्तों, कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म जुड़वां से। आवाज दी है अभिजीत ने।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने नए। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचाना से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से अनुप्रसारित होगा।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: बल्ले मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा गलियों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के फसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पर लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असद अल्लाह खां गालिब का पता मिलता है।
1: आप सुन रहे हैं रंग तरंग गुलजार स्पेशल।

0: भूपिंदर की आवाज थी, गुलजार के बोल थे, खुद भूपिंदर की मौसिकी।
1: देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पर लटकती हुई बूंदें, जो ताकुब में थी एक दूसरे के और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कोहसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरन्नुम पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफकार में गुम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता हुआ।

दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं। जिस तरह शाख से तोड़े हुए एक पत्ते का रंग मान पड़ जाता है कुछ रोज अलग शाख से रहकर, शाख से टूट के ये दर्द जिएगा कब तक? खत्म हो जाएगी जब इसकी रसद टिमटिमाएगा जरा देर को बुझते बुझते, और फिर लंबी सी एक सांस धुएं की लेकर खत्म हो जाएगा ये दर्द भी, बुझ जाएगा। दर्द कुछ देर ही रहता है, बहुत देर नहीं।

0: आमद की आहट और न जाने की टोह मिलती है।
1: कब आते हो, कब जाते हो। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है जैसे सूखी मिट्टी पर कोई पानी के कतरे फेंक गया हो। धीरे धीरे आंगन में फिर धूप से सिसकती रहती है। कब आते हो, कब जाते हो।

तक इंतजार करती। कोहरे में खड़ा हुआ पुल तो नजर आ रहा था, लेकिन उसके सिरे नजर नहीं आते थे। कभी लगता उसके दोनों सिरे एक ही तरफ हैं, और कभी लगता इस पुल का कोई सिरा नहीं है। शाम बुझ रही थी और आने वाले की कोई आट नहीं थी कहीं। नीचे बहता दरिया कह रहा था, आओ मेरी आगोश में आ जाओ, मैं तुम्हारी बदनामी के सारे दाग छुपा लूंगा। मट्टी के शरीर से बहुत खेल चुके, इस खिलौने के रंग अब उतरने लगे हैं।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: उस रात बहुत सन्नाटा था, उस रात बहुत खामोशी थी। साया था कोई न सरगोशी, आहट थी न जुम्बिश थी कोई। हां देर तलक उस रात, मगर बस एक मकान की दूसरी मंजिल पर एक रोशन खिड़की और एक चांद फलक पर एक दूजे को टिकटिकी बांधे तकते रहे।

कुछ ऐसी एहतियात से निकला है चांद फिर, जैसे अंधेरी रात में खिड़की पे आओ तुम। क्या चांद और जमीन में भी कोई खिंचाव है?

सितारे चांद की कश्ती में रात लाती है, शहर के आने से पहले ही बिक भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा है व्यापार इन दिनों सबका। बस एक पानी की आवाज लपलपाती है, घाट छोड़ के माझी तमाम जा भी चुके। चलो न चांद की कश्ती में झील पार करें।

भी तरकीब सिखा कोई यार जलाए। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरा बुंदर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे।

0: विविध भारती पर रंग तरंग गुलजार स्पेशल।
1: मैं रोजगार के सिलसिले में कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से, वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंगता सा पुराना खंभा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंभा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंभे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं, आज भी ये वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या?

आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा, आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी, आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। कहां छुपा दी है रात तूने, कहां छुपाए हैं तूने अपने गुलाबी हाथों के ठंडे भाए, कहां हैं तेरे लबों के चेहरे, कहां है तू आज, तू कहां है, ये मेरे बिस्तर पे कैसा सन्नाटा सो रहा है।

रंग तरंग कार्यक्रम आज गुलजार स्पेशल है। आज है गुलजार साहब का जन्मदिन और अब देखिए ना वक्त कैसे खत्म हो गया और आखिरी पेशकश की बारी आ गई। जेके बनर्जी की आवाज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। बारहवां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और विशेषज्ञ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आम सहमति बनाना और पर्यावरण के क्षेत्र को मजबूत करना है। भारत की

0: ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना उत्कृष्ट निर्णय है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। रियासी के सदिनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। सभी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज शाम लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार थुजार के साथ मुकाबला करेंगी। मिक्स डबल्स के पहले दौर में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे को कनाडा की जोड़ी जोनाथन लाई और क्रिस्टन लाई से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एक अन्य मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तुर्की के एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास से खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज करीब आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 366 अंक गिरकर 77,362 पर और निफ्टी 87 अंक की गिरावट के साथ 24,201 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए मणप्पुरम के।

यादों की महफिल सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार।

बसेरा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज आरडी बर्मन की तर्ज। आशा भोसले, आरडी बर्मन, गुलजार, इजाजत।

0: अशोक उसली की आवाज आरडी बर्मन की तर्ज है। फिल्म का नाम है नमकीन।
1: एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजू से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।

0: रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

के कभी पढ़ना वो चिट्ठिया, आँखों के पानी में रखना वो चिट्ठिया, तैरती नजर आएगी जरा।

फिल्म का नाम था हू तू तू। गुलजार भूपेन हजारिका, लता मंगेशकर फिल्म रूदाली।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि यह प्रसारण आप उन्हें सुन पाएंगे दिन में 1:05 से। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की FM फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ सुन या यार इंटरनेट के माध्यम से ऑल इन रेडियो लाइव के जरिए और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन रहे हैं। इस समय दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है। ये सम्मेलन सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच प्रदान करता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए।

0: सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में हो रही बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न दलों के नेता शामिल हैं। बैठक में गुरुवार से शुरू हो रहे विधानसभा के छठे सत्र को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि सदन सुचारू रूप से चले और जनहित के मुद्दों पर शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राजस्थान पुलिस के महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में सुरक्षा सखियों और युवा सीएलजी सदस्यों से संवाद करेंगे। इसके बाद वे ओटीएस एचसीएम रीपा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अमृत योजना और जयपुर विकास प्राधिकरण के तहत करीब 1100 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ और लोकार्पण करेंगे। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में गौवंश के उपचार के लिए नेत्र चिकित्सा स्पेशलिटी सेंटर बनाया जाएगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने केंद्र के लिए भूमि पूजन कर इसका शिलान्यास किया। इस केंद्र में गौवंश के नेत्र रोग, मोतियाबिंद और दृष्टिहीनता जैसी समस्याओं का विशेषज्ञ स्तर पर उपचार किया जाएगा। इस अवसर पर श्री कुमावत ने कहा कि सरकार गौवंश के संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने ऐसे केंद्र संभाग स्तर पर विकसित करने की बात कही। इस दौरान मोबाइल पशु रोग निदान प्रयोगशाला वाहन का भी लोकार्पण किया गया। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये वाहन गांवों और गौशालाओं तक पहुंचकर पशुओं के रक्त, दूध और अन्य नमूनों की मौके पर जाँच करेगा। सवाईमाधोपुर में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच और स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। जिला अस्पताल सहित सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित शिविरों में गर्भवती महिलाओं की जांच कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया गया। जांच के दौरान एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पूर्व सिजेरियन, जुड़वा गर्भावस्था और अन्य जटिलताओं वाली महिलाओं को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के रूप में चिन्हित किया गया। जरूरत के अनुसार उन्हें उच्च स्वास्थ्य संस्थानों के लिए रेफर किया गया। अजमेर में नशा मुक्त समाज का संदेश देने के लिए आज वॉकेथॉन आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की ओर से आयोजित वॉकेथॉन पुरानी चौपाटी से शुरू होकर नई चौपाटी तक पहुंची। इसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और बड़ी संख्या में आमजन ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। कोटा पुलिस में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा आधारित स्मार्ट पुलिसिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये 3 दिन का कार्यक्रम IIIT कोटा में कल से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में कोटा शहर और कोटा रेंज के 75 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान AI, साइबर सुरक्षा और अन्य नई डिजिटल तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय दिन का 1:05 हुआ है। चलिए वापस चलते हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की तरफ।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक।

सुरीली बोलियां बोलने का संदेशा देते हैं गुलजार और विविध भारती। हमेशा सुरीली बोलियां ही बोलती है। क्या आप बता सकते हैं कि गुलजार साहब का जन्म कहां हुआ था? और दूसरा सवाल यह है कि साहित्य से जुड़े दो बहुत बड़े पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए, तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। सुलक्षणा पंडित की खनकती आवाज, ये बहुत सारे श्रोताओं ने कहा, कुछ श्रोताओं ने इसे लता मंगेशकर की आवाज समझ लिया, ये गलत जवाब था। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं, बचपन के बाबूजी के साथ जंगल जंगल बात चली है, फूल खिला है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि गुलजार हर फन में माहिर हैं। वो अस्पताल के मायूस माहौल में लिखते हैं, इस अस्पताल में सब कुछ है और माहिर डॉक्टर भी सांसें मशीने के जरिए चलती हैं और बोतलों में भरकर खून मिलता है, लीवर भी ठीक दाम पर मुहैया रहता है। उन्होंने एक गुलजार साहब की कोई रचना शेयर की है हमारे एक श्रोता ने। इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता है जिन्होंने आज की इबारत के सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने, बारिश कम कम लगती हैं, नदियां मध्यम लगती हैं वगैरह चुनकर लिखती हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, गुलजार साहब की कलम ने हमें सिखाया है कि दर्द भी खूबसूरत हो सकता है और खामोशी भी बोलती है, शब्दों का ऐसा जादू कम लोगों को आता है। एक और श्रोता हैं जिन्हें आज का सुबह जो आज के फनकार कार्यक्रम था वो बहुत पसंद आया। एक और श्रोता हैं जिन्हें गुलजार और विशाल भारद्वाज का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है और उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे हैं। एक श्रोता हैं जो जर्मनी से हमारे तमाम विविध भारती परिवार को सलाम कर रही हैं और आज का ये कार्यक्रम सुन रही हैं। इसके अलावा तमाम श्रोता हैं जो बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे और अपनी बातें कर रहे हैं। सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, गुलजार साहब कहां पैदा हुए थे? साहित्य के दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं, वो पुरस्कार कौन से हैं? आज के इस कार्यक्रम में कुछ बहुत कठिन पहेलियां भी पूछी जाने वाली हैं। चलिए अब ये गाना जो बहुत ही शानदार गाना है ये आप तक आ रहा है और आपको ये भी बताना है कि अगर तीन गुलजार सॉन्ग्स, टॉप थ्री गुलजार सॉन्ग्स, योर मोस्ट फेवरेट्स मैं लिखने को कहूं तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर अपने तीन सबसे ज्यादा पसंदीदा गाने कौन से लिखेंगे आप? विविध भारती पर सुरीला सफर कार्यक्रम में हैप्पी बर्थडे गुलजार साहब।

1978 में आई फिल्म घर का ये गाना। एक और श्रोता है जो कह रही हैं कि वो नीदरलैंड्स में ये कार्यक्रम सुन रही हैं। और देखिए ना कि न्यूज ऑन एयर एक ऐसा एप्लीकेशन है और एलेक्सा डिवाइस जिसके जरिए पूरी दुनिया में विविध भारतीय हमारे श्रोता सुनते चले जा रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में लोगों को विविध भारती सुनाई दे रहा है। गुलजार साहब का जन्म दीना में हुआ था और साहित्य के जो दो बड़े पुरस्कार उन्हें मिले हैं वह है साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी उन्हें अपनी किताब धुआं के लिए मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिला था साल 2023-24 में। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है, उनकी नज्मों में पीला चांद कैसे शाख में अटक जाता है, आकाश जमी हो जाता है, गीला चांद कैसे खिल जाता है। गुलजार साहब कहते हैं चांद पर उनका कॉपीराइट है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार ने रोजमर्रा के बिंब जैसे चाय की प्याली, धूप, खिड़की, कोहरा, अलमारी जैसी आम चीजों को कविता का हिस्सा बना दिया है। यही होता है एक बड़ा लेखक। झेलम जिले के दीना में गुलजार साहब का जन्म हुआ था। ये बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इसके अलावा सुलक्षणा पंडित वाली बात भी बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि गुलजार साहब का काम कितना ज्यादा सराहा जाता है। गुलजार साहब को कुल कितने फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं ये बताइएगा। कठिन सवाल है लेकिन खोज कर बताएं, सोच कर बताएं, पर बताएं जरूर। और दूसरी चीज, जब गुलजार साहब कहते हैं बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे, तो क्या याद आता है।

आशीर्वाद फिल्म का ये गाना सभी श्रोताओं की, सभी सुनने वालों की आंखें नम कर देता है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखती हैं, एक था बचपन बहुत अच्छा लगता था, पर अब बाबूजी नहीं हैं तो ये गाना भाव विह्वल कर देता है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि मुझे मेरे पिताजी सुनाते थे बचपन में ये गीत, एक था बचपन। उनके पिता, मेरे दादाजी उन्हें छोड़कर चले गए थे, बाद में पता चला कि वो साधु बन गए थे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हृदय को झंझोड़ कर रख देता है ये गाना। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि बाबूजी के रूप में अशोक कुमार नजर आते हैं। इसके अलावा कई श्रोता हैं। एक और श्रोता लिख रही हैं, गुलजार की आंखों में उदास उदास चमक उनकी आंखों पर अक्स डालती रहती है, यही उदास चमक उनकी शायरी का लहजा भी है। कई श्रोताओं ने जवाब दिया है कि गुलजार साहब को कुल 22 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। 22 फिल्म फेयर पुरस्कार, जरा सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा कीर्तिमान। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पिताजी याद आते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि सुरीला सफर कार्यक्रम में आपने जो गुलजार साहब के गाने सुनवाए वो बहुत अच्छे लगे। कमेंट्स की इतनी लंबी लकीर आज है कि सभी कमेंट्स सुनना, सभी कमेंट्स पढ़ना भी मेरे लिए नामुमकिन होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि आप में से ज़्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल किए जा सकें। एटलीस्ट मैं आपके कमेंट्स पढ़ तो सकूं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 116 चांद की रातें एक तुम्हारे कांधे का तिल जैसी गहराई है, गुलजार साहब के अल्फाज में। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि आज कुछ कहने का मन नहीं, वो बस आंखें बंद करके सुरीले गाने सुनती रहना चाहती हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता, उनका कहना है कि सावन की बरसती बूंदों ने आज मुझे कान में आकर कहा कि आज का ये कार्यक्रम यूनुस खान पेश करने वाले हैं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा एक और श्रोता है जिनका ये कहना है कि गुलजार साहब कि इस कार्यक्रम में जिस तरह से आपने आगाज किया आंखें नम हो गईं। और इसके अलावा गुलजार साहब को जो अवार्ड्स मिले हैं उन सब की लिस्ट हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यहां पर पेश की है। तो ये सवाल वापस के गुलजार साहब के टॉप 3 सॉन्ग्स आपकी नजर में कौन से हैं, आपके सबसे पसंदीदा दिल के करीब 3 गुलजार गाने हमें बताइए। और अब आ रहा है वो गाना जो हम सब के लिए बहुत करीब, बहुत अनमोल। अगर कभी गुलजार साहब से आपकी मुलाकात हो जाए तो पहला वाक्य आप क्या कहेंगे?

0: जिंदगी गले लगाले वाली पुकार, गुलजार साहब का ये गाना आज के इस कार्यक्रम में यूं लग रहा है कि कितने गानों को शामिल करें और किन गानों को छोड़ दें। आज के इस कार्यक्रम में हमने क्या लिखा, सलाम उस शख्स को जिसने हर एक गम को गले लगाया है, सलाम उस शख्स को जिसने भराई बूंदों को बरस जाने दिया, फिर भी उसके लिए जिंदगी खूबसूरत है और वो कहता है जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, कितनी पॉजिटिविटी, कितना हौसला। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता कहते हैं कि जैसे ही गुलजार हमें मिलेंगे हम कहेंगे हमारी उंगली पकड़कर कुछ गीत हमें भी सिखा दो ऐसे प्यारे प्यारे से। इसके अलावा एक श्रोता लिख रही हैं, सांस लेना भी क्या आदत है, जिए जाने की क्या रवायत है। इसके अलावा एक और श्रोता है, जिंदगी हर चीज का जवाब नहीं देती, सवाल करती रहती है, इसी में जिंदगी का विकास है, जवाब का खोज, जवाब की खोज जिंदगी है। तमाम श्रोता जो हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मेरी पसंदीदा तीन गाने हैं तो उसे नाराज नहीं, दिल ढूंढता है और आने वाला पल। एक और श्रोता है उनके तीन पसंदीदा गाने हैं, जिंदगी गले लगा ले, एक था बचपन और तुम आ गए हो, नूर आ गया है। ऐसे तमाम श्रोताओं की बातें लगातार हम तक चली आ रही हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलजार के भीतर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है, इसीलिए तो वो कायदा तोड़ के सोचो वाली बात लिख सकते हैं, क्या बात है। और इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं, मुसाफिर हूं यारों तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं और तुझसे नाराज नहीं, ये उनकी पसंदीदा नज़में हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और उसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं, कसैली रात के हाथों पर रख दी चांद की मिश्री, ये दिन रूठा हुआ था धूल में लिपटा हुआ कब से, तेरे आंचल से चेहरा पोंछ कर बहला लिया है उसको, मैं अपने गले लग गया नाराज सा खुद। बहुत ही प्यारी बात लिखी है। और अब चलिए आगे चलते हैं एक श्रोता के कमेंट के साथ कि पिताजी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, 8 साल की उम्र में उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। अब आ रहा है अगला गाना जो जिसमें बेलें और आयतें वाली बात कही गई है। बताइएगा ये फिल्म किस बरस आई थी और इसके मुख्य सितारे कौन थे।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
2: क्यों कर रहे हो, कहां आ पाऊंगी मैं दिन में।
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

0: आंधी फिल्म का ये गाना आपने सुना, क्या आप बता सकते हैं कि सुचित्रा सेन ने और कौन कौन सी हिंदी फिल्मों में काम किया था? अब जवाब तो आ ही गया था आप सभी का, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, और इसके अलावा कई श्रोताओं की बातें आई हैं, जैसे त्रिवेणी गुलजार साहब जो तीन लाइनों की कविताएं लिखा करते थे, उसमें से कुछ श्रोताओं ने त्रिवेणी की कविता लिखी है। अब एक श्रोता ने ऐसी कविता लिखी है जो धूम्रपान का जिक्र जिसमें आता है, और हम उसे अभी यहां नहीं पढ़ रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गुलजार साहब जिंदगी में बेमिसाल कामयाबी और शोहरत मिलने के बावजूद उनके पैर जमीन पर ही टिके हैं, इसलिए वो हमें अपने से लगते हैं। जिंदगी तुझे मैंने हर मोड़ से गुजरते हुए देखा, ये बात लिखी है हमारे एक और श्रोता ने। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं, और गुलजार साहब ने जिंदगी के हर रंग को छुआ है, उन्होंने कभी अपनी नज्मों से, कभी अपने गीतों से कुदरत के दिए हर रंग को उन्होंने इस तरह से अपनी कलम से कागज पर उतारा है जो हर किसी को अपना और दिल के करीब लगता है।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: हो तो कठिन हो जाता है सवाल। सुचित्रा सेन ने इसके अलावा कौन सी और हिंदी फिल्मों में काम किया था, यह बताइए। और इसके अलावा यह भी कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म के लिए और किस काम के लिए मिला था, यह भी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर को छोड़कर बड़े शहर का रुख किया है आपने रोजगार या पढ़ाई के सिलसिले में? किस शहर को छोड़ आए हम, किन गलियों को छोड़ आए हम?

क्या शानदार गाना। और हमने आपसे पूछा था वो कौन सी गलियां, वो कौन सा शहर छोड़ आए आप, और उसकी याद सताती है। एक श्रोता का जवाब आया है, जेते जेते पोथो होले देरी, ये बांग्ला गीत था जिस पर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं ये गाना बना था। जेते जेते पोथो होले देरी, ये गाना पंचम ने खुद गाया है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब, बंबई का बाबू, देवदास, ममता, आंधी, चंपा कली, ये हैं सुचित्रा से इनकी हिंदी फिल्में, क्या बात है, विविध भारती परिवार की जय हो। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि माचिस का गाना सचमुच दिल छू लेने वाला है, मैं सीहोर की गलियों को छोड़कर आया हूं और आज भी याद करता हूं पढ़ाई वाले दिन। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने सुचित्रा सेन की एक फिल्म का नाम बंबई का बाबू लिखा है। एक और श्रोता जिन्होंने कहा है कि गौरी प्रसन्न मजूमदार का लिखा हुआ था जेते जेते पोथो होले देरी, क्या बात है, सुंदर, अच्छी बात, ये बढ़िया बात। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलजार अपनी कविता और गानों में चांद का प्रयोग बार बार क्यों करते हैं, शायद इसलिए कि गुलजार के लिए चांद सिर्फ आसमान में दिखाई देने वाली चीज नहीं बल्कि पूरी काव्य दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक है, शायद इसीलिए गुलजार ने मजाक में कहा था लगता है चांद पर मेरा कॉपीराइट है। गुलजार साहब चांद को बहुरूपिया भी कहते हैं, कितनी प्यारी और महीन और शानदार बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि गुलजार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1971 में मिला था आनंद फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड। तो बताइए आनंद फिल्म के कौन कौन से गाने और कौन कौन से संवाद हैं जो आपके दिल में छप गए हैं, आपके दिल में महकते हैं, चमकते हैं। एक और श्रोता, ग्वालियर छोड़ाए छोड़ाए हम वो गलियां। एक और श्रोता, भोपाल छोड़ाए छोड़ा है हम वो गलियां। एक और श्रोता, राजपीपला से लंबा छोड़ाए और छोड़ाए हम वो गलियां। कितने श्रोता हैं जिन्होंने अपने अपने शहरों को छोड़ा और अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपनी जिंदगी की तलाश में दूसरे शहरों की तरफ निकल आए हैं। तो ये तमाम बातें, लेकिन अब ये भी तो बताइए कि गुलजार साहब को एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड किस गाने के लिए मिला। तब तक जरा गूंज रही है एक बहुत ही प्यारे गायक की आवाज, उसका नाम भी आपको बताना है। किसकी आवाज में है ये गाना, यही आपको है बताना।

गुलजार साहब को ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार किस गाने के लिए मिला ये भी बताइएगा, और ये आवाज किस बेमिसाल गायक की है। सुरीला सफर गुलजार स्पेशल विविध भारती

बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए कि यह अनूप घोषाल की आवाज है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलजार साहब ने भगवान बुद्ध की कई मूर्तियों का कलेक्शन कर रखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम समझ नहीं पाते, खुश हो, निराश हो या हैरान, कई बार हम दो राहे पर खड़े होते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत। जिंदगी से हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तभी मन खुद से सवाल करता है कि हमने जिंदगी से ये तो नहीं चाहा था। गुलजार एक बेजोड़ गीतकार हैं, वो जो शब्द रचते हैं वो सिर्फ उनके नहीं होते, हमारे और आपके होते हैं। 1983 में आई फिल्म मासूम का ये गाना दिल के करीब है। इसके अलावा आनंद का एक डायलॉग जो बहुत ही मशहूर हुआ वो है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो भागलपुर छोड़ाए हम वो गलियां, एक और श्रोता है जो करतारपुर छोड़ाए और कहते हैं कि अपने शहर की बहुत याद आती है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नज्मों में जब डूबती नब्जों में

0: जो आपके दिल के करीब है, कुछ पंक्तियां हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और जिस गाने के लिए गुलजार साहब को मिला था ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड, वो था सारी दुनिया में बजा था भारतीय कलाकारी का डंका, जब जय हो को मिला ग्रैमी और जय हो को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। ये है कमाल।
1: आजा आजा जिंदे शामी आने के तने, आजा जरीवार नीले आजमाने के तने।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि बासु भट्टाचार्य बोलते थे कि गुलजार भोर या सांझ की तरह हैं, जिसका प्रकाश इतना कोमल है कि अपने पीछे कोई परछाई नहीं छोड़ते। और इसके अलावा तमाम श्रोताओं की अपनी बातें हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है।

0: भाई खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। और
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420022।

किनारा फिल्म का ये गाना एक श्रोता है जिन्हें हेमा मालिनी और जितेंद्र याद आ गए। एक श्रोता है जिन्हें लिखा, वक्त की जेब में सुराख बहुत हैं, हंसती खेलती पहचाने गिर जाती हैं, चेहरों के नक्श तो पानी के बुलबुले हैं, एक हवा का झोंका और सब कुछ ओझल। उन्होंने अपने एहसास बयां किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ी की जरूरत है, सच में जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब किशोर कुमार इस गाने को गाते हैं। नाम गुम जाएगा ये गाना बहुत ही सारे श्रोताओं का पसंदीदा गाना है। कई श्रोता हैं जिन्हें आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए कि क्या हो रहा है।

बहुत सारे श्रोताओं ने अपने जवाब दिए हैं। बंटी और बबली फिल्म का ये गाना, शाद अली निर्देशक। किसी ने फिल्म देखी पटना में, किसी ने देखी भोपाल में, किसी ने देखी इंदौर में। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ गए हैं। गुलजार स्पेशल, सुरीला सफर।

0: दुदुनी चार 1969 में बनी फिल्म बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए, छाओ छम से नीचे कूदी, क्या पंक्ति है। ये सभी श्रोताओं को बहुत ही पसंद है ये गाना, और गुलजार साहब स्पेशल को आगे बढ़ाते हुए अब अगला गाना।
1: छोटी बातें

0: बहुत सारे श्रोता आनंद फिल्म के इस गाने के लिए बहुत बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं। और
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: धन्नों का गुस्सा और धन्नों की आंखों में क्या बात है, गुलजार साहब के बोल, पंचम की आवाज, फिल्म का नाम किताब, गुलजार स्पेशल। ये गाना किस फिल्म का है?
1: सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है।
0: 1963 से आज तक जारी है एक सुरीला सफर।

ये वो गाना है जिसके लिए गुलजार साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। वैसे उन्होंने कुल कितने नेशनल अवार्ड जीते हैं ये भी बता सकते हैं आप। देखिए ना, सारी वादी भर गई।

गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के साथ तय किया और आज थी गुलजार साहब के गानों की बारिश।

दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं और परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार। इन्हें केवल देखने का माध्यम कहना पर्याप्त नहीं है। भीतर का संसार इन्हीं दो आंखों में समाया हुआ है। कभी ये मुस्कुराकर प्रेम प्रदर्शित करती हैं, तो कभी करुणा और संवेदना का सारा संसार बयां कर देती हैं। जब किसी के मन की बात समझनी हो तो उसकी आंखों में झांकना चाहिए। इन आंखों को परमात्मा ने बड़ी अद्भुत व्यवस्था दी है। देखने के साथ आंखों को बंद करने की भी क्षमता दी है। जब चाहें तो संसार देखें और जब चाहें आंखें मूंद लें।

जब आंखें बंद हो तो आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, ताकि इन्हें आराम करने और नींद लेने का अवसर मिले और आंखें स्वस्थ रहें। आंखों को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इन आंखों को बंद करने, नींद लेने का अवसर कम ही मिल पाता है। इनकी व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

आज के समय में हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का अत्यधिक उपयोग हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव डाल रही है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन, धुंधलापन और सर दर्द जैसी समस्याएं आने लगी हैं। कम उम्र के बच्चे भी इन समस्याओं से जूझने लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा है। धूल, प्रदूषण, तेज धूप, अनगिनत दिनचर्या और अत्यधिक व्यस्तता, भागदौड़ भी इन आंखों की रोशनी को प्रभावित कर रही हैं। अगर समय रहते इन समस्याओं पर, आंखों की उचित देखभाल पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंखों के कमजोर होने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए आंखों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इन आंखों के सिवा जीवन में रखा ही क्या है।

अपनी आंखों का नियमित देखभाल करना चाहिए। संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मौसमी फल और पर्याप्त पानी आंखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पढ़ते समय उचित प्रकाश का उपयोग करें। स्क्रीन से बहुत अधिक तो हम बच नहीं सकते, लेकिन बीच बीच में आंखों को बंद करके आराम देना चाहिए। समय समय पर आंखों की जांच भी कराना चाहिए। ज्यों आंखें न सब देखिए, आंख न देखी जाए। जिन आंखों से हम दुनिया देखते हैं, वही आंखें खुद को नहीं देख पाती। ये आत्मचिंतन का भी विषय है। हम दूसरों को देखते हैं, परखते हैं, पर अपने भीतर झांकने का प्रयास कम ही करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए अपनी बाह्य दृष्टि के साथ साथ अंतर्दृष्टि का भी ध्यान रखना उचित होगा, ताकि आंखों में छुपे ये राज कोई आसानी से न जान सके, न पढ़ सके।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर

सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को

0: आंदोलन में किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगणमन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाए।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्नपत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्नपत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिवशंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
2: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का 5वां संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
3: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है।

0: पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसैया अरुमनैयागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतारथुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्तास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जौली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

0: सन्नाटा फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में था।
1: राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।
0: लता मंगेशकर और तिलक महमूद की आवाजों में प्रेम पत्र फिल्म का

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में कशिश फिल्म का गाना, गुलजार के बोल, संगीत कल्याण जानन जी का।

0: दिलचस्प दास्तान।
1: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सिर से खून बहने लगा.
1: ओह माय गॉड.
0: और खूब खून की धारा बही. तब से साइकिल चलाने से बड़ा डर लगता था.
1: क्या?
0: और साइकिल चलाना छोड़ ही दिया. हाँ. फिर घर में किसी ने कहा ही नहीं कि साइकिल चलाना सीखो, जबकि जरूरी था. और लेकिन हाँ, लड़कियों को हम साइकिल चलाना देखते थे तो मन बहुत करता था कि हम भी चलाएं. लेकिन वो जो डर है ना,
1: डर बैठ गया,
0: वो डर निकला नहीं. तो बस यही कहना है श्रोताओं से कि अगर कोई बात मन में डर के रूप में घर करती है तो घर वालों का ये कर्तव्य होता है कि उस डर को निकालें.
1: बिल्कुल सही.
0: और अगर डर नहीं निकालेंगी तो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, सपने नहीं देख पाएंगी. सपने देखने के लिए डर निकालना और आत्मविश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है.
1: और उनकी जो सीखने की ललक होती है उसमें रंग में भंग भी नहीं डालना चाहिए, है ना?
0: तो बस जी, तो आज तो सारे विषय एक साथ समेट लिए गए हैं एक ही बात में.
1: और
0: एक ही बात
1: जी, और सखी विशेष में हम बात करेंगे नीरू शर्मा जो इंफीबीम की सह संस्थापक है, इनके बारे में बात करेंगे.
0: और मुहावरों की जो दुनिया है ना, रंग में भंग डालना, तो हमने जो मुहावरे बताए हैं, हमारे श्रोता कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग करते हैं और आज के दौर में मुहावरों का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और
1: जो कि ममता जी, जब लंच का टाइम होता है तो कहते ही घर में कि भाई जल्दी परोसो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इस तरह की बातें होती है ना. और ये भी होता है कि घोड़े बेचकर सोना, मतलब अब सोते ही रहोगे, क्या कुछ करोगे नहीं, इस तरह की बातें मुहावरों में.
0: बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद खाने के लिए.
1: बिल्कुल.
0: तो ऐसे कौन कौन से मुहावरे हैं जो हमारे श्रोता याद रख सकते हैं और मुहावरों का प्रयोग करते हैं किन मुद्दों पर, तो वो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखें. और साथ में ये बताएं कि जो हमारा एक विषय है, बेटियों को सिर्फ संस्कार नहीं आत्मविश्वास से निडर बनाएं. और अगर छोटे छोटे डर उसमें रोपते रहेंगे या संस्कारों के बोझ से आप दबा देंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा. संस्कार सिखाएं जरूर, लेकिन आत्मविश्वास की शर्त पर नहीं. आत्मविश्वास उनके अंदर झकझोरे पैदा करें.
1: सही बात है, क्योंकि आगे चलकर वो जो भी काम करे तो उसमें उन्हें संकोच ना हो अपनी बात कहने में. कई बार होता है ममता जी, अक्सर लड़कियां मतलब संकोच करती, मन की बात कहना होता, कुछ करना चाहती तो 10

0: फासला भी हुआ करता था ना, बहुत छोटे जब हाथ पैर साइकिल तक पहुंचने लायक नहीं होते, मतलब 5-6 साल की उम्र में 3 पहिए वाला वो साइकिल रिक्शा दे दिया जाता था
1: बच्चों को जो साइकिल होती थी।
0: हाँ, तो वो भी अगर आपको याद हो, आपके जहन में हो, वो याद ताजा हो, तो जरूर साझा करें। फिलहाल गाना सुनवाते हैं।

0: निर्णय लेने की क्षमता और अपने लिए आवाज उठाने का साहस देना भी उतना ही जरूरी है।
1: आत्मनिर्भरता बहुत
0: बिल्कुल
1: जरूरी है, और साथ में जो संस्कार की पोटली थमाई जाती है तो उसमें साथ में ये भी बताया जाता है कि क्या गलत है, क्या नहीं, क्या सही है। तो ये संस्कार देना जरूरी है, लेकिन इस संस्कार के साथ लड़कियों को दब्बू बनाना ठीक नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: कि कुछ लड़कियां बहुत अंदर से बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, प्रतिभाशाली होने के बावजूद, क्लास में एक दब्बू लड़की बन के रह जाती हैं, क्योंकि उनको बोलना ही नहीं आता। उनके मन में भरा होता है कि अरे बाप रे, अभी कहीं कोई मेरी बात का बुरा ना मान जाए। तो
0: बिल्कुल
1: इससे लड़कियों को बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये बात उनके मन से निकल गई तो जो उनके भीतर सपने पल रहे हैं उन सपनों को पंख देने में आसानी होगी।
0: बिल्कुल। और हर माँ को अपनी बेटी को आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहिए। उसे ये एहसास कराना जरूरी है कि बाहरी दिखावे से अधिक उसका आत्मविश्वास और ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: और ये भी कि
0: जी
1: हर कदम पर उन्हें ये कहें, अरे लोग क्या कहेंगे, जरा झुक के चलो, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, जरा ठीक से चलना, वहां जाना तो देखना, ज्यादा लड़कों से बात मत करना, नहीं तो लोग देखेंगे तो शिकायतें आएंगी। इन सब से मुक्त कर देना चाहिए। अब
0: बिल्कुल
1: उनके करियर के बारे में बात करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में, कि आप आज दिन भर में क्या किया, कौन से अखबार पढ़े, कौन सी किताबें पढ़ी, और आज जो तकनीक का जमाना है, तकनीक में कौन सी नई तकनीक सीखी। हमें नहीं लगता हम अपने इर्द गिर्द कोई माँ घर में अपनी बेटी से अमूमन दिन भर में ये सवाल पूछती है, बेटे से ये सवाल पूछा जाता है
0: बिल्कुल।
1: लेकिन
0: और
1: बेटियों से नहीं।
0: पहले देखिए, ये ऐसा होता भी था कि जैसे कि कोई चीज दिलानी है तो नहीं भाई अभी तुम्हें नहीं दिलाएंगे, बाद में दिलाने, या सिखाने की बात होती, जैसे साइकिल की बात है, वाहन ही सिखाने की बात है, तो उसमें भी 10 तरीके की बातें की जाती थी बेटियों से कि अगर चलाओगी तो गिर जाओगी, हाथ पैर टूट जाएंगे तो शादी कौन करेगा, इस तरह की बातें अक्सर ही हुआ करती थी। तो जैसे आपने कहा है कि ना कहना, तो ये चीज बहुत जरूरी कि अगर आपका मन नहीं है, आप उसको समझ नहीं अच्छा, तो ना ही कर दीजिए उस चीज को।
1: ना
0: और
1: करने का एक फायदा भी होता है
0: जी
1: कि बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारे दुर्व्यवहार से आप बाहर आ जाते हैं।
0: बाहर आ जाते हैं
1: बचपन में बड़े ये सिखाते हैं कि लड़कियों को नम्र होना चाहिए, बड़ों की बात मानना चाहिए, आदर करना चाहिए, और झिझक, मतलब एक तरह का झिझक रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि घर के ही लोग, घर के ही नाते

0: वो चूल्हा भी संभालेगी और सपना भी, रिश्ते भी निभाएगी और दुनिया में अपना नाम भी बनाएगी, क्योंकि हमने उसे सिर्फ संस्कारी नहीं मजबूत बनाया है।
1: और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संस्कार जीवन का आधार होता है और आत्मविश्वास उनकी सुरक्षा का कवच है, और जब इसमें निडरता

0: मान लीजिए कि कोई ऐसी नौबत आती है जहां पर वो दो राहे पर हैं, चौराहे पर खड़े हैं, तो वो अपनी बात कहने कह ही नहीं पाते हैं कि उन्हें
1: बिल्कुल
0: बड़ों का अदब करो, बड़े संस्कारी बनो, बड़ों से जबान मत लड़ाओ, बड़े अगर कुछ कहें तो खड़े हो जाओ उनको देखते। ये सब संस्कार सिखाना ठीक है, लेकिन उनसे आजकल जो जमाना है
1: जी
0: उनसे मित्रवत बर्ताव करें।
1: सही बात, ये आपने

0: इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार

0: नीरू शर्मा की उद्यमिता की कहानी भी ऐसे ही एक विचार से शुरू हुई। भारत में ई कॉमर्स को आम व्यापारियों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचाने का सपना इन्होंने पूरा किया। कैसे पूरा किया इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आज।
1: नीरू शर्मा भारतीय टेक और ई कॉमर्स क्षेत्र की उद्यमी है और इंफीबीम के सह संस्थापक रही है। बाद में कंपनी का कारोबार डिजिटल पेमेंट और फिनटेक सेवाओं की ओर काफी बढ़ा और नीरू शर्मा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS से की और आगे चलकर अल्काटेल जैसी तकनीकी कंपनी में काम किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से MBA किया, जिसमें वित्त और रणनीति पर विशेष ध्यान दिया इन्होंने।
0: और MBA के दौरान और उसके बाद उन्हें अमेज़न में काम करने का मौका मिला। वहां ई कॉमर्स के कामकाज, ग्राहकों की सुविधा, कीमत और व्यापारिक रणनीतियों को करीब से समझने का अनुभव मिला। यही अनुभव आगे चलकर उनके उद्यमी बनने की प्रेरणा का अहम हिस्सा बना।
1: और भारत लौटने के बाद नीरू शर्मा ने ई कॉमर्स के क्षेत्र में कुछ नया करने का फैसला किया। इंफीबीम के साथ उनका उद्देश्य केवल ऑनलाइन सामान बेचने तक सीमित नहीं था। वे ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार करना चाहती थी जिसके माध्यम से छोटे व्यापारी, रिटेलर और ब्रांड भी इंटरनेट पर अपना कारोबार बढ़ा सके।
0: इंफीबीम के शुरुआती दौर में ई कॉमर्स और ऑनलाइन रिटेल पर जोर था। समय के साथ कंपनी ने डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स समाधान और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार किया और इंफीबीम के जो एवेन्यूज होते हैं उन्हें बढ़ाने के लिए भारत के शुरुआती सूचीबद्ध ई कॉमर्स कंपनियों में गिना जाता है।
1: नीरू शर्मा का सफर इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने केवल नौकरी में ऊंचे पद तक पहुंचने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपने तकनीकी और व्यावसायिक अनुभव को एक नए विचार में लगाया। उन्होंने ये दिखाया कि तकनीकी की समझ और व्यापार की सोच मिलकर समाज और बाजार दोनों में नया अवसर पैदा कर सकती है।
0: और उनकी जो कहानी है इससे एक महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है कि सफलता केवल बड़े संस्थान में नौकरी करने से नहीं मिलती, बल्कि अपने अनुभव को किसी नई समस्या के समाधान में लगाने से भी मिल जाती है।
1: बिल्कुल। और नीरू शर्मा की यात्रा उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो तकनीकी, व्यवसाय और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। उनका सफर भी बताता है कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है, अनुभव हमें समझ देता है और साहस हमें अपने सपने को वास्तविकता में बदलने की ताकत देता है।
0: अब सुनते हैं ये गाना।

0: की तब मुझे मिली थी। हालांकि ये साइकिल नई नहीं थी, मेरे भाई की साइकिल मुझे मिल गई थी। फिर मुझे करीब 6 साल पहले फिर साइकिल का सुरूर चढ़ा और घर में नई साइकिल खरीदने के लिए पति से काफी जद्दोजहद हुई, पर मैंने अपने लिए एक नई साइकिल खरीद ही ली। अभी कुछ ही दिन चलाई थी कि एक दिन मैं साइकिल से गिर पड़ी और मेरे बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया और मुझे प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। अभी मैं सुबह साइकिल चलाती हूँ पर अब बहुत संभल कर चलाती हूँ।
1: सही बात है, अगर गिरेंगे, कहते हैं ना कि गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, लेकिन हाँ चोट लग गई तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो वही आप अपना ध्यान रखें। और हमारे साथ ही लिखते हैं कि मेरे बड़े भाई जो दूसरे शहर में काम करते थे, उन्होंने एक पुरानी लूना खरीदी और उसे ट्रेन से हमारे शहर ले आए ताकि उसे इस्तेमाल कर सकूं। उस समय मैंने सरकारी नौकरी शुरू की थी। उस शुरुआती दौर में जो मोपेड थी उनकी शॉकअप और सस्पेंशन नहीं थे, मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे पिता पीछे बैठे थे। गाड़ी के सख्त होने की वजह से वो रेत और कचरे में से भरी सड़क पर गिर गई। मुझे थोड़ी चोट भी आई, ठीक होने में 1 महीना लगा और मुझे बिना वेतन के 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी। मुझे अक्सर अपनी वो पहली गाड़ी याद आती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब 12 साल का था तब घर में पहला वाहन

0: स्कूटर वो चला रहे हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं हमारी सखी हैं, इन्होंने लिखा है कि जब मैं नवी कक्षा में थी तभी अपने नाना नानी के पास पढ़ाई करने आ गई थी, तब मेरे नाना जी ने मुझे साइकिल खरीद कर दी थी। वो एक लेडीज साइकिल थी और मुझे सिखाई भी नाना जी ने। हमारे घर के सामने एक वॉलीबॉल ग्राउंड था, वहां पर मैंने खूब साइकिल चलाई और मैं साइकिल पर चढ़ तो जाती थी लेकिन उतरना नहीं आता था। अपनी सहेली के साथ स्कूल जाती थी और मुझे वो साइकिल से उतार थी। क्या बात है भाई, आज तो यादों के खजाना खोल दिया गया है।
2: और एक साथी लिखते हैं कि उस समय कितना प्रेम था साइकिल से, घर से थोड़ी दूर भी जाना होता था या मम्मी छोटे से छोटा काम भी बोलती थी तो उछल कर करने के लिए तैयार हो जाती थी। फिर आ गया स्कूटी, अरे नहीं नहीं, इससे पहले तो मैं कार भी चलाना सीख ली थी पर पापा जी चलाने नहीं देते थे, उन्हें लगता था कहीं मार दूंगी। फिर स्कूटी आया तो अब तक काम आ रही है, मतलब वो, और हालांकि शुरू से लेकर अब तक तीसरी स्कूटी है। जैसे जैसे नई तकनीकी की आती जाएगी गाड़ी तो मैं चेंज करती रहूंगी। वाकई आपने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि सालों साल तक वो याद रह जाती कि कैसे हमने अपने माता पिता को मना कर अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी और कितनी खुशी हुई थी जब हम पहली गाड़ी खरीदने गए थे। माता पिता को बैठक बाहर लेकर जाना, दोस्तों को घुमाना, बिठा कर मतलब ले जाना घुमाना, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना और अपने अगर पसंद की गाड़ी मिल जाए तो पसंद का कलर मिल जाए तो गाड़ी में और भी मजा आता है, इन्होंने कहा है। और पहले वाहन को चलाने में बहुत खुशी इन्हें महसूस हुई है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि साइकिल हमारे जीवन से हमेशा जुड़ी रहती है, हम छोटे होते हैं तब स्कूल के लिए, जवानी में नौकरी के लिए और बड़ी उम्र में मोटापा करने के लिए जिम वाले साइकिल चलाते हैं। क्या बात है भाई, सही बात है। और कई बार लोग जरा जरा सी कम जगहों मतलब थोड़ी दूरी के लिए भी बाइक उठा लेते हैं या कार उठा लेते हैं चल जाने के लिए, तो ऐसे जगहों पर आप साइकिल से जा सकते हैं, इससे आपकी कसरत भी हो जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में मेरे घर में लाल रंग की छोटी साइकिल थी, उसको मैं खूब दौड़ाया करता था। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा पहला वाहन ठेलन गाड़ी थी जिसमें मुझे बिठाकर चलना सिखाया गया था।
2: जी। और एक लिखते हैं कि पहला वाहन साइकिल था तो नौकरी की पहली तनख्वाह जब उन्हें मिली तो उस पर उन्होंने साइकिल खरीदी, उसके बाद उन्होंने फिर एक अच्छी कंपनी की साइकिल खरीदी और रोजाना करीब 15 किलोमीटर स्कूल में पढ़ने जाते थे और बाकी रुपए पिताजी को दे दी जो उनकी तनख्वाह हुआ करती थी उस समय।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा भी पहला वाहन और आखिरी वाहन साइकिल ही था और अभी तक है। परिवार इतना धनी नहीं था कि काठ का तिपहिया वाहन बनवाता, ये तो गनीमत रही कि शादी जल्दी हो गई और साइकिल मिल गई जो बदलते हुए भी अब तक बना हुआ है। भाई शादी में आपने साइकिल अगर दहेज मिली है तब तो हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई ये जानकर, क्योंकि हम तो हमेशा ये कहते हैं कि भले ही कितनी विपन्नता हो लेकिन जो दहेज में आप ले रहे हैं वो लोग कैसे कलेजा काट के चीजें इकट्ठे करके वो दहेज देते हैं, उन माता पिता से जरा पूछे उनका दर्द क्या होता है।
2: अपनी मेहनत से खुद खरीदें तो बहुत अच्छी बात है
1: जी।
2: तो चलिए सुनते हैं गीत।

0: भाई मंजरी जी, अगर कोई काम बड़े मनोयोग से किया जा रहा हो, बहुत तन मन धन से, और अचानक कोई आकर उसमें विघ्न डाल दे, तो क्या कहा जाता है? रंग में भंग डाल दिया है ना।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे बहुत सारे श्रोता इस बारे में लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हम पिकनिक मनाने गए, लेकिन बारिश ने इस हंसी खुशी के माहौल में रंग में भंग डाल दिया। अचानक बारिश शुरू हुई, इसका वाक्य प्रयोग हमारे किसी नाम लिखा, उनकी शादी में कुछ रिश्तेदारों की बातों के कारण रंग में भंग डाल दिया गया।
1: इसी तरह देखिए हमारे साथी और भी लिखते हैं कि अचानक बारिश रंग जमाने के अलावा भंग भी डाल देती है। खेल रहे बच्चे अचानक झगड़ने लगने से रंग में भंग पड़ जाता है, और अचानक बिजली चली जाए और टीवी पर सीरियल देखते वक्त भी रंग में भंग पड़ जाता है। और कुछ साल पहले दूरदर्शन चालू प्रोग्राम के वक्त सिग्नल प्रॉब्लम होने पर प्रसारण रुक जाता था, तब भी रंग में भंग पड़ जाता था।
0: वो तो बहुत अलग किस्सा हुआ करता था, एक अलग ही अनुभव है कि लोग छत पर फिर जाते थे और उस सिग्नल को हिलाते थे, और फिर वहीं से चिल्लाकर एक बंदा पूछता था, आया, आ गया, स्क्रीन आया कि नहीं आया। फिर नीचे से कोई बताता था, नहीं नहीं नहीं अभी नहीं है। अच्छा, तो और हिलाते थे उसको, वो एक अलग ही, तो वो तो, और वो रंग विभंग जो पड़ता था ना, वो बड़ा करारा होता था, बहुत
1: अभी
0: ही
1: तक याद है वो रंग में भंग। और हमारे एक साथी और लिख रहे थे कि किसी हंसी खुशी के माहौल में अचानक बाधा डालना या मजाक किरकिरा हो जाना, ऐसे ही एक बार हमारे साथ हुआ सब। अच्छा, ये आपने पढ़ लिया था, मुझे याद आ गया।
0: तो एक टिप्पणी है, ये देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। इन्होंने लिखा है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी तो जल्दी जल्दी तैयारियां होने लगी, पर तिलक का दिन आया, लड़की वाले तिलक चढ़ाने आया, और तिलक जैसे ही खत्म हुआ, अभी लड़की वाले घर से निकले भी नहीं थे कि बड़ी मम्मी की डेथ हो गई। फिर तो शादी भी रोकनी पड़ी, फिर कुछ दिनों के बाद मंदिर में शादी करवानी पड़ी क्योंकि घर से नहीं हो सकती थी। चूंकि लड़की को हल्दी लग चुकी थी तो उन्हें साल भर वैसे छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए पंडित जी से पूछकर उनकी शादी मंदिर से हो गई, तो वहां पर वो रंग में भंग पड़ गया। हालांकि ये ऐसे नकारात्मक मौकों पर, दुखद मौकों पर इस मुहावरे का प्रयोग नहीं किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: रंग में भंग पड़ना एक सकारात्मक जब कार्य हो रहा होता तो वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि खुशी पूर्वक त्योहार मनाया जा रहा था और बिना मतलब के बात के तनाव बढ़ गया और रंग में भंग पड़ गया। टेरेस पार्टी चल रही थी, अचानक बारिश आ जाने से रंग में भंग पड़ गया और सारे मेहमान अंदर भागने लग गए। और इसी तरह से एक साथी लिखते हैं कि मेरे घर में ऐसा हो चुका है कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी और वो चाहती थी कि उनके बेटे यानी मेरे भैया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। भैया की शादी तय थी। अच्छा, ये वाला भी आपने पढ़ लिया है ना। तो लिखते हैं कि रंग में भंग डालने का काम शादियों में बहुत देखने को मिलता है। जब सब काम चकाचक है, खाना लजीज है, तो सब नाच गा रहे हैं और कोने में फूफा जी मुंह फुलाकर बैठे हैं क्योंकि उन्हें गाड़ी में आगे नहीं बिठाया गया था, तो
0: ये रंग में भंग
1: पड़ गया।
0: और ये अक्सर होता है, हर शादी के माहौल में होता ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में खुशियों के रंग भरने में समय लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती या किसी नकारात्मक सोच उन रंगों में भंग डाल सकती है, इसलिए दूसरों की खुशी से ईर्ष्या करने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। रिश्तों में विश्वास, प्रेम और समझ बनाए रखें, क्योंकि रंग तभी खूबसूरत लगते हैं जब उनमें मिलावट नहीं बल्कि अपनापन हो। किसी की मुस्कान में भंग डालने की बजाय उसकी खुशी का हिस्सा बनना ही सच्ची इंसानियत है।
1: बिल्कुल। और देखिए, कहीं भी कुछ फंक्शन हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, कहीं गाने बज रहे हैं और उसी में आंधी पानी आ जाए तो भी रंग में भंग पड़ ही जाता है एकदम। और ये कहते हैं कि रंग में भंग का दृश्य कुछ साल पहले देखने को मिला। लिखते हैं कि शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन का जयमाला कार्यक्रम चल रहा था, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब का गीत बज रहा था, तभी ऐसी आंधी आई कि टेंट उड़ने लगा, शामियाने के खंभे उखड़ने लगे, लोग घर

0: में भागकर छिपने लगे। दूल्हे ने दुल्हन को कमर से कसकर पकड़ रखा था। जैसे तैसे मंच से उतरकर मकान के छज्जे के नीचे खड़े हुए। फिर जोरदार बारिश भी आ गई, सब रंग में भंग पड़ गया।
1: तो भाई ये
0: जी
1: कहने का मतलब ये है कि मुहावरों का प्रयोग आज भी जारी है, हमारे बहुत
0: जी
1: सारे श्रोताओं ने लिखा है, और भी बहुत सारे मुहावरे हैं आपके पास, खोज के रखिए, अगली बार फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: देखिए अब घड़ी की ओर बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक
0: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड?

0: है।
1: हाँ? पता नहीं,
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
5: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 0152-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युवावाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
6: बस आपको माइक के सामने बैठना, बोलना है और बेशुमार अपने दिल की बातें करनी है।
7: क्या
6: बहुत अच्छा लगता है सीरियली।
7: तो बस आज तो दिल की अलमारी खोलनी होगी आप दोनों को। आप बताइए प्रतिभा जी, आप तो रेडियो में अनाउंसर रही हैं, आपके लिए ये लम्हा कैसा है?
8: बिल्कुल, मुझे ऐसे मायके आ गए ऐसे लग रहा है।
7: तो फिर शुरू हो जाइए। मायके का जिक्र होता है तो लड़कियां फिर मायके पहुंच जाती हैं, तो मायके की वो याद साझा कीजिए। रेडियो में आप अनाउंसर थी
8: जी,
7: आकाशवाणी जलगांव में।
8: आकाशवाणी जलगांव में मैं अनाउंसर थी।
7: तो कैसे वहां तक पहुंची और कैसे वहां से वापस?
8: वहां रेडियो में तो मैं कैजुअल अनाउंसर थी, तो उस वक्त कैजुअल अनाउंसर्स का बहुत बोलचाला था।
7: जी जी।
8: तो उस वक्त बहुत मजा आता था, मतलब अलग अलग अलग से प्रोग्राम करने को मिलते थे, गाने बजाने को मिलते थे। वो जो अभी हम लोग जो रिकॉर्ड्स देख रहे थे वो हमें उस वक्त हमें बिल्कुल बजाने पड़ते थे।
7: क्या बात है। तो वो सारी यादें ताजा हो गई।
8: बिल्कुल,
7: तो बस यादों के गलियारों में हम आपको दोनों को ले चलेंगे। फिलहाल हम यशपाल जी से जानना चाहते हैं कि ये बरेली के बच्चन कैसे बन गए आप? बताइए।
6: हाँ, बरेली के बच्चन एक बहुत सालों बाद, शायद 14-15 सालों बाद मैं कोई सीरियल कर रहा हूँ, नीली छतरी वाले के बाद एक्चुअली, क्योंकि मैं सीरियल नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी में कभी ज्यादा। लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं वो आपको खींच लेते हैं, जैसे नीली छतरी वाले ने मुझे खींचा और मतलब बहुत मेरा लाइफ टाइम एक यादगार काम बन गया। उसी तरीके से बरेली के बच्चन का जो स्क्रिप्ट है और जो रोल है वो मुझे इतना भाया कि मुझे लगा कि अब सब कुछ छोड़ के थोड़ा टाइम इसमें बिताया जाए और इसमें जिया जाए और देखते हैं कुछ क्या चैलेंज आते हैं सामने, कुछ डिफरेंट करने के लिए, कुछ चैलेंजिंग करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ यादगार करने के लिए मैंने बरेली का बच्चन स्वीकार किया।
7: जी, और हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो जानना चाहेंगे, देखेंगे कि क्या है, कौन है बरेली के बच्चन। हमने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है और हम भी उत्सुक हैं देखने के लिए।
6: शुरू हो चुका है ये
7: जी
6: 8 जून से और डेली रात को 9 बजे सोमवार से शुक्रवार आता है, और अगर आप मिस कर दें तो जियो हॉटस्टार पे वो परमानेंट रहता है।
7: क्या बात,
6: तो आप वहां भी देख सकते हैं।
7: जी, आपकी दोनों की फिल्मी दुनिया और जो टेलीविजन की दुनिया है, इतनी लंबी यात्रा है आपकी फिल्मों की कि बहुत कम शब्दों में मुश्किल है बात करना, लेकिन हम वहां चलते हैं पहले, जहां यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा मिले, वो एनएसडी की दुनिया थी शायद। बताइए आप दोनों कैसे मुलाकात हुई, बारी बारी से। प्रतिभा जी आप बताइए पहले।
8: जी, मैं गलती से
7: मिली है यशपाल जी से।
8: गलती से मैं बॉयज हॉस्टल चली गई थी जब मुझे एनएसडी के लिए जा रही थी, मतलब गई थी मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो जो फाइनल हमारा इंटरव्यू होता है, वर्कशॉप होता है, उसमें 5 दिन का वर्कशॉप होता है, उसमें फाइनल सिलेक्शन होता है। तो उसके लिए जब मैं वहां से जलगांव से दिल्ली आई थी और दिल्ली जब मैं गई तो मुझे वहां पे बोल दिया गया कि आप वहां जाओ। तो मैं वहां वकील ले

0: में गई और वहां बॉयज हॉस्टल में टिकी रही एक रात, तो वहां मैं रही। तो सुबह मुझे आना था, तब मैं सामने से इधर से आ रही हूँ और यशपाल जी उधर से आ रहे हो लेन से,
1: अरे
0: और हम एक दूसरे को देखे और फिर ये बोले कि चलिए मैं आपका सामान लेके चलता हूँ।
1: अच्छा, ये तो फिल्मी स्टाइल में बिल्कुल। फिर क्या हुआ? अच्छा
0: बस फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन में भी दोनों का नाम आउट हो गया, तो ऑफकोर्स साथ में ही थे। फिर तो लड़ाई लड़ाई चलती रही।
1: पूछते हैं यशपाल जी से कि लड़ाई किस तरह की होती है, ये थोड़ा सा बाद में पूछेंगे, पहले जरा एनएसडी की बातें कर लें। यशपाल जी, हमने सुना है कि एनएसडी के लिए जब आप चले हरियाणा हिसार से, तो वो क्या जर्नी थी, वो क्या यात्रा थी, जरा बताइए।
2: वो यात्रा बहुत आसान नहीं थी। एनएसडी में कम से कम भी मैंने 3 बार अप्लाई किया, तब नहीं हुआ, तो चौथी बार किया तब हुआ।
1: अच्छा,
2: जिस साल प्रतिभा ने अप्लाई किया उस साल हुआ मेरा।
1: तो मतलब मुकद्दर ने इंतजार करवा के आप
2: पता
1: दोनों
2: नहीं,
1: को
2: लेकिन तीन साल
1: मिलाया।
2: नहीं हुआ, 3 साल नहीं हुआ के बाद मेरा चंडीगढ़ में हो गया, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में। तो वहां से फिर 1 साल किया मैं, तो 1 साल बाद दिल्ली में भी हो गया, तो फिर मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। तो दिल्ली में उन दिनों 91 की बात है, 91 जून की, उसमें हमने शुरू किया था। प्रतिभा भी थी हमारी क्लास में, बाकी हमारे मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, कुमुद मिश्रा, बाकी बहुत सारे लोग मराठी भी, अनिरुद्ध खुटवड़ और अभय
0: अभय
2: कुलकर्णी
0: कुलकर्णी।
2: जी, तो ये भी साथ बहुत सारे लोग थे, जो बहुत अच्छा बैच था हमारा।
1: जी, तो ये आपके दोस्त लोग हैं आशुतोष राणा, मुकेश जी, इनसे जुड़ी हुई कोई खास याद साझा करना चाहेंगे आप?
2: नहीं ठीक है, ये तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कुछ शेयर नहीं कर सकते।
1: ओ
2: तो ठीक है, उसको चल रहने देते हैं थोड़ा
1: जी
2: सा।
1: जी
2: हाँ, लेकिन
1: बात
2: एक एक याद मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। कुमुद मिश्रा और मेरा चेहरा एकदम मिलता था उस वक्त,
1: जी जी जी
2: तो मेरे जितने भी उसके प्रेस के कपड़े थे, लॉन्ड्री वाला मुझसे मांगता था।
1: अरे अच्छा
2: और आशुतोष राणा ने अपने आप को मतलब हीरो साबित करने के लिए एक दिन क्या किया कि अपने बाल कर्ली करवा लिए, और
1: अच्छा
2: कर्ली करवा लिए, बिल्कुल मलिंगा जैसा दिख रहा था वो, तो मतलब और बहुत खराब दिख रहा था। तो जो भी, अरे ये क्या करवा लिया, सबका रिएक्शन यही, अरे ये क्या करवा लिया।
0: कुछ ना कुछ
2: तो
0: करवाते ही
2: और
0: रहता
2: बता
0: था
2: रहा था
0: वो।
2: भाई, 400 रुपये बहुत ज्यादा थे उस वक्त, 400 रुपये तो हमारी स्कॉलरशिप थी उस वक्त।
1: बिल्कुल
2: तो बोलो 400 रुपये में करवाए हैं बाल कर्ली। तो और जिस जो भी देखे, रितु तलवार थे, वो भी, अरे बाप रे कितना खराब लग रहा है यार, आशु ये क्या कर लिया तूने। तो बेचारा इतना परेशान हो गया, शाम को जब हॉस्टल गए तो हॉस्टल के बाहर नाई बैठा था, तो 2 रुपये में गंजा हो गया। मैं नहीं भूल सकता वो आशुतोष राणा की वो बात।
1: जी, तो वैसे भी बड़े उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, और कोई किस्सा याद आएगा बातचीत के दौरान तो जरूर साझा कीजिएगा, और वो आपके दोस्त भी हैं। तो यहाँ दोस्ती के नाम या उन दिनों के नाम कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? कौन सा, किसकी पसंद का गाना सुना है, प्रतिभा जी या यशपाल जी?
2: प्रतिभा जी,
0: पिया तो से
1: नैना
0: नैना
1: लगे रे, वाह भाई क्या बात है, गाइड फिल्म का गाना है, तो यही गाना सुनते हैं।

0: भाई ये गाना पिया तो उसे नैना लागे रे, ये इन्होंने आपके लिए ही मुझे लगता है सुनवाया होगा यशपाल जी। तो मुझे आपसे ही जानना है कि ये प्रतिभा जी ने जिक्र किया कि आपने इनका सामान उठाया, तो ये जो प्रेम का बीज था आप दोनों के बीच, प्रेम का पौधा कैसे
1: बीच
0: रोपा गया?
2: पौधा नहीं था, बहुत भारी बैग था इसका जो जो मैंने उठाया था,
0: जी
2: और तकरीबन 150 मीटर 200 मीटर होगा वहाँ
1: चल के
2: इस
1: चल के जाया।
2: हॉस्टल से वहाँ तक। तो वो मंडी हाउस क्रॉस करके पूरा तो वहाँ गए थे। तो प्रेम का बीज ऐसा कोई फिल्मी कहानी की तरह ऐसा नहीं था हमारा, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर, और या मतलब हाँ, लेकिन एक फिल्मी बात जरूर थी कि 3 साल तो हमने खूब लड़ाइयाँ की, अच्छे काम किए, नाटक किए, और एक में तो हम चंद्रहास में भाई बहन बने थे, और बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रहा सारा। लेकिन जब खत्म हुआ और जब ये चली गई, तब बड़ा मैंने मिस किया, क्योंकि भाई अब कोई ना तो लड़ने वाला, ना कोई प्यार करने वाला, ना रूठने वाला, ना मनाने वाला, तो बड़ा मिस किया। तो मैं एक दिन फिर सीधा इसके घर पहुंच गया, जलगांव,
0: अच्छा
2: दिल्ली से जलगांव, सीधा दरवाजा खोला और ये माँ बेटी मेरे सामने खड़ी, और ए ऐसे हैरान। और फिर मैं चला गया और फिर उसी ट्रेन से वापस आ गया, मगर नहीं तुम साथ चलो।
0: अच्छा
2: तो भाई ऐसे नहीं जा सकते, शादी वादी करना पड़ेगा, बच्ची बड़ी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, करवा लो, कल कर लेते हैं।
0: ओ
2: बोले नहीं, अभी तो तारा डूबा हुआ है। मैं कहा तारा तो हम निकाल लेंगे। तो आर्य समाज मंदिर में गए तो वो बोले पंडित जी के भाई तारा डूबा हुआ हम नहीं मानते। तो मैंने कहा तो फिर करवा डालो आज। तो बस थोड़ी देर बाद शायद दोपहर तक सारी तैयारी करके हमने शादी कर ली। शादी के दौरान, फेरों के दौरान पता लगा कि वो पंडित जो था वो हिसार का था हमारे
0: अरे तो
2: वो आर्य
1: यशपाल के
2: समाज।
1: वहां से कोई नहीं था तो वो हिसार के थे।
0: अच्छा।
2: तो बड़ा कोइंसिडेंस रहा बाय चांस, और ऐसे शादी हो गई। और फिर पहली बार जिंदगी में मैं और प्रतिभा एसी कोच में सफर करके जलगांव से दिल्ली गए।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर एक गाना जरूरी लग रहा है, प्रतिभा जी बताइए कौन सा गाना, या यशपाल जी आप बताइए।
2: हुई शाम उनका

0: प्रतिभा जी की जो प्रेम की नैया चल पड़ी है यूं कहेंगे, और आपकी जिंदगी का सुनहरा और सुरीला सफर चल पड़ा है, तो इस सफर की आगे की कहानी आप बताइए। फिर जब साथ में रहने लगे, फिर वो नोक झोंक तकरार के दिन, कौन सी ऐसी बात है जो यशपाल जी की पसंद हुई नापसंद हुई वो बताइए।
1: नहीं, हम लोग साथ में काम करते थे रेपेट्री में, और साथ में खाना खाते थे, और उस उतना ही हमारा मिलना होता था पूरे दिन में। बाकी पूरा दिन हम दोनों काम में लगे रहते थे
0: कौन सा
1: रेपेट्री
0: काम
1: में।
0: था?
1: रेपेट्री में एज एन एक्टर
0: नाटकों
1: काम
0: की
1: करते थे,
0: रिहर्सल वगैरह।
1: नाटकों की रिहर्सल कंटिन्यू होती रहती है।
0: तो कौन से वो नाटक थे जो उन दिनों रिहर्सल चल रहे थे उन नाटकों के?
1: आइंस्टाइन कर रहे थे हम लोग, मुआवजे कर रहे थे, कर्मावाली थे, ये सारे नाटक वहां पे उस वक्त चल रहे थे, उसमें ही हम लोग काम कर रहे थे। हमारे वक्त कुछ नाटक नए शुरू हुए थे आइंस्टाइन जैसे, तो वो नाटकों की रिहर्सल चलती
0: वो
1: रहती।
0: दोनों लोग उसमें
1: हाँ,
0: किरदार।
1: यशपाल तो आइंस्टाइन बने हुए थे, मैं उनके जो उनकी वाइफ है उसकी फ्रेंड बनी हुई थी उस नाटक में,
0: जी
1: मारिया।
0: जी यशपाल जी से हम जानना चाहते हैं। अब फिल्मों की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, फिल्मों के नाम क्या गिनाए हैं? गंगा जल, अपहरण, बवंडर, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगान फिल्म आपके फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो लगान फिल्म से हम शुरू करते हैं। लगान फिल्म की कहानी बताइए, कैसे आप जुड़े, कैसे आमिर खान से मुलाकात हुई, कैसे आशुतोष गोवारिकर से मिले आप, दोनों कहानी बताइए आप।
2: लगान वाकई में मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लगान तक ही मैंने स्ट्रगल किया ऑफिस ऑफिस घूम करके,
0: जी
2: उसके बाद नहीं किया फिर मैंने, क्योंकि अपने आप फोन आते थे, बात होती थी, काम मिल जाते थे। तो लगान जब मिल रहा या मिली थी, उस वक्त हम वनराई कॉलोनी में रहते थे, जहां सिर्फ एक कमरा था, बिल्कुल छोटा सा, एक छोटा सा बाथरूम था और छोटी सी बालकनी थी, और एक स्लैब था जिसे किचन का नाम

0: दिया गया था, तो हम दोनों उसी में रहते थे। और वहाँ सारे स्ट्रगलर, राजपाल यादव, विजय राज, ये अनूप सोनी, कुमुद मिश्रा, सब वहीं रहते थे। बहुत सारे सीमा विश्वास, राजेश तैलंग, सब वहीं रहते थे। बहुत बड़ा एक स्ट्रगलर का अड्डा था वो,
1: था वो।
0: स्ट्रगलर सब लोग, क्योंकि सस्ता था ना, तो सब लोग वहीं आके रुक जाते थे
1: जी।
0: तो वहाँ रहते थे हम। तो वहाँ हमारे पास पेजर था, पेजर में मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन और क्लेमेंटिना डैश क्लेमेंटिना। मैंने कहा ये क्लेमेंटिना क्या है भाई, ये जरूर किसी ने प्रैंक खेला है, कोई कान खिंचाई कर रहा है हमारी। तो मैंने सोचा चलो काम तो कुछ था नहीं
1: जी जी,
0: मैंने कहा फोन तो कर लेते हैं। तो मैंने फोन किया तो आमिर खान प्रोडक्शन में लगा फोन, तो वहां उठाया, लैंडलाइन था उस वक्त, मोबाइल नहीं थे, तो लैंडलाइन था, तो उसमें क्लेमेंटिना ने उठाया, तो वो एक लड़की का नाम था,
1: अच्छा
0: क्रिश्चियन लड़की का
1: जी।
0: तो मैं बोला, तो वो बोले आशुतोष ग्वारीकर कल मिलना चाहते हैं आपसे, आप आ जाइए ऑफिस, ये एड्रेस भेज रही हूँ मैं, पेजर पे मैसेज आ गया मुझे। और मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया। उन्होंने 3.5-4 घंटे ऐसे घूम घूम के, कमरा बंद किया, बोले नोबडी विल डिस्टर्ब मी, और घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। ये कमाल की बात है। मैंने उनसे सीखा कि अपने खून में पूरी कहानी होनी चाहिए, जो कि मैंने फॉलो किया बाद में डायरेक्ट करते हुए। तो उसने सुनाई, और रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल है। मतलब इसमें वेरिएशन भी है, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी। तो और उसने बोला कि लाखा के लिए हम ढूंढ रहे हैं,
1: क्या बात है।
0: तो मेरी तो ऐसे ही, मैंने कहा भाई थैंक यू भाई, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा, और मैंने थैंक यू वैंक यू नहीं है, ऑडिशन देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ऑडिशन देंगे ना। तो अगले दिन मुझे बुलाया आमिर खान के घर पे, और वहां ऑडिशन हुआ। ऑडिशन दे करके मैं निकला, और निकलते ऑटो में बैठा ही था, 10 मिनट हुए होंगे मुझे कि मेरे पास मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड।
1: क्या बात है।
0: मैं स्टेशन जा रहा था ट्रेन पकड़ने, तो मैं तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार के साथ मेरा मतलब सिलेक्शन हो रहा है, और इतने बड़े रोल के लिए। तो मैं तो बड़ा खुश था। तो उन्होंने क्या है, आमिर खान को भेजा ऑडिशन उसी वक्त। आमिर खान मद्रास में थे, AR रहमान के पास म्यूजिक के लिए कुछ बैठे हुए थे। तो उसके बाद मैं घर गया, उन्होंने बोल दिया कि सिलेक्ट, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया मेरे लिए, तो हो गई बात। अब अगले दिन मुझे आना था प्रोडक्शन पैसे की बात करने, तो रीना दत्ता से,
1: जी जी
0: रीना दत्ता उनकी जो वाइफ थी, प्रोड्यूसर थी उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि भाई आप पैसे की बात कर लो। तो मैं रास्ते भर ट्रेन में ये सोचता रहा कि साला यशपाल इस बार ना तू सब छोड़, 1 लाख रुपया मांग लो, ये मौका है, बड़ा प्रोडक्शन है, और मतलब मिल जाएगा, कोई मना नहीं करेगा। फिर ख्याल आया कि यार अगर उन्होंने नहीं दिए तो, मैंने कहा फिर 80,000 में कर लूंगा, फिर सोचा चलो 40-50,000 में कर लूंगा, अरे यार मैंने कहा काम तो कुछ है नहीं, 20,000 मिलेगा तो भी कर लूंगा।
1: क्या बात है।
0: फिर मैं गया रीना दत्ता जी के ऑफिस में गया, तो रीना दत्ता जी ने पहली बात यही बोली कि यशपाल हमारा बजट बहुत कम है, हम सबको 1.5-1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं नहीं मैडम, इतना लंबे दिन है, इतना बड़ा रोल है, 2 लाख तो होना चाहिए। तो मैडम ने बोला ठीक है साइन कर दो।
1: क्या बात है।
0: अब देखो ये होता है, और वो भी फिर 4.5 महीने के लिए था, फिर शेड्यूल बढ़ गया, फिर 1 महीना, फिर 50,000 और एक्स्ट्रा बढ़ गए, और 250 रुपया पर डे एक्स्ट्रा और मिलता था, तो मतलब मौज ही मौज हो गई थी। खैर वो बात अलग है, लेकिन लगान ने जो दिया, पूरी दुनिया में घुमाया, पूरी दुनिया में हम फेस्टिवल्स में गए, और अमेरिका कनाडा के टूर पे भी गए, दुबई, हर जगह, बहुत जगह गए हमने, पूरी दुनिया, मलेशिया, मॉरिशस, सब जगह घुमा दिया इस फिल्म ने, और बहुत कुछ दिया, और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई, बेस्ट 5 में चली गई थी
1: जी, बिल्कुल
0: बिल्कुल कांटे के टक्कर में बची लास्ट में। तो ये था किस्सा लगान का
1: जी।

0: था कैसे नचा।
1: आपने जैसे बताया कि विविधता थी इस कहानी में आपने जब सुना, लेकिन लाखा का किरदार बड़ा ही अलग तरह का था, बड़ा महत्वपूर्ण था। उस किरदार को गढ़ने के लिए आपको किस तरह की तैयारी करनी पड़ी निजी तौर पर?
2: तैयारी उन्होंने एक हफ्ता पहले बुला लिया था आशुतोष गवारीकर ने सबको
1: जी।
2: मुझे याद है मेरा जन्मदिन था 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को ही मेरी फ्लाइट थी, तो वो उसी दिन मैं गया था, और 7 तारीख से शायद शूटिंग शुरू थी, 6 या 7 से
1: जी।
2: तो एक हफ्ता हम वहाँ पूरे गांव में घूमते थे, मीटिंग करते थे, और आशुतोष गवारीकर हर किसी के पास आकर के बताता कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी लकड़ियां पड़ी हैं, तुम वहां से जंगल से लकड़ियां काट के लाते हो, लकड़हारा हो, और यहाँ लकड़ियां इकट्ठी करते हो, और फिर गांव में एक एक जैसे 4-4 लकड़ी या 10-10 लकड़ी ऐसे बेचते हो गांव में। तो मतलब एक करेक्टर मेरा समझ में आ गया था, और यहाँ से वो सामने गोरी का घर है हीरोइन का, उससे तुम प्यार करते हो इसलिए ज्यादातर तुम यहीं खड़े रहते हो, और क्या है कि उसका बाप जो है हीरोइन का वैद है, तो मैं क्या।
3: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: कैमरामैन थे तो टीम भी बहुत बढ़िया थी, अच्छे सब एक्टर लिए हुए थे और क्रू भी बहुत कमाल का था सारा। अपूर्व लाखिया उसका चीफ एसोसिएट डायरेक्टर था, जो कि आजकल बहुत बड़ा डायरेक्टर बन चुका है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की हैं अभी। तो बहुत बढ़िया टीम थी और आशुतोष गवारीकर की क्लैरिटी कमाल की थी। उसको मालूम था कि मुझे क्या चाहिए और वो उनसे एक्टरों से निकलवा लेता था
2: जी। और आमिर खान तो परफेक्शनिस्ट हैं।
1: बिल्कुल, आमिर खान के साथ उनकी बहुत सारी मुलाकातें हमारी शूटिंग से पहले ही हो चुकी थी और सब कुछ तय हो चुका था कि क्या करना है।
2: बिल्कुल, और आप दीजिए एक गाना, आप बताइए कौन सा गाना सुनवाए यहाँ पर।
1: लगान का ही सुनवा दो।
3: हाँ, वो बहुत इंस्पायरिंग।
1: कोई हमसे जीत न पाए।

0: इस फिल्म से जुड़ा हुआ अनुभव आप साझा करना चाहेंगे प्रतिभा?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ये फिल्म इतनी हिट हुई उसके बाद हमारे बच्चे हुए, तो मेरे बच्चों को मैं रोज लगान दिखाती थी और बच्चे इतने ज्यादा यूज टू हो गए थे उस लगान के, मम्मी लगान लगाओ ना, मम्मी लगान लगाओ, रोज देखना उनको लगान रोज।
0: तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं यशपाल जी की और
1: नहीं,
0: आपकी,
1: वो
0: तो
1: नहीं देखनी, ये ही देखनी,
0: सिर्फ यही देखते हैं। और जब आप बड़े हो गए हैं बच्चे तो फिल्म देखते हैं तो कोई टीका टिप्पणी करते हैं एक्टिंग के बारे में?
1: अरे उनके फेवरेट एक्टर है उनके पापा।
0: क्या बात है बहुत बढ़िया। कोई आना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में?
1: हाँ बड़ा वाला तो कोशिश भी कर रहा है
0: जी, नाम बताएं तो?
1: सौम्य शर्मा।
0: चलिए सौम्य जी के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
2: अरे हाँ एक मिनट, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ।

0: की शूटिंग चल रही थी तो प्रतिभा का फोन आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो तुम, कौन सी फिल्म कर रहे हो, धोती बोती वाली? देखो यहाँ पे इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी। कौन सी थी वो? बोली बाप रे, एक ऐसा हीरो आ गया है जो उसने सबको फेल कर दिया है, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, हाउसफुल जा रहे हैं, और क्या फिल्म बन रही, क्या फिल्म बनी है, मैं भी देख के आई। हैं
1: ऋतिक
0: कौन
1: रोशन
0: सी
1: की
0: वाली
1: पहली
0: फिल्म
1: फिल्म जो थी
0: थी? कहो ना प्यार है।
1: कहो ना
0: हैं
1: प्यार है। अच्छा
0: है? तो मैं डर गया भाई, मैंने कहा छोड़ दूं क्या लगान, क्या करूं। लेकिन देखिए वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई, लगान भी, और लगान के साथ गदर भी रिलीज हुई, और गदर भी सुपर डुपर हिट हुई,
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: दोनों।
1: प्रतिभा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक फिल्म थी राजेंद्र कोठारी की, है ना, याद होगी आपको, दास कैपिटल। तो इसमें आप हीरोइन है और यशपाल जी हीरो, निजी जिंदगी के हीरो भी वही है। तो
2: जी
1: ये पर्दे पर उनको हीरो के रूप में देखना, खुद को हीरोइन के रूप में देखना, ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, अनुभव कैसा
2: नहीं,
1: था?
2: हम लोग पहले से मतलब साथ में काम करते
1: कर
2: आए
1: चुके
2: थे,
1: हैं।
2: तो मैं जब गुलजार साहब के साथ और मैं जब श्याम बेनेगल साहब के साथ काम कर रही थी, तब मुझे राजन कोठारी जी ने नोटिस किया था एज एन एक्टर, तो उनके मैं याद में थी, ध्यान में थी। तो उन्होंने हालांकि सीमा विश्वास को कास्ट किया था और यशपाल की जगह कौन और एक्टर थे,
0: पता नहीं मुझे,
2: रघुवीर यादव
0: रघुवीर यादव,
2: शायद,
0: सही
2: हाँ
0: है सही।
2: रघुवीर यादव
1: जी
2: उनके दिमाग में थे। पर जैसे ही उन्होंने मेरे वो वाले काम देखे थे, वो क्योंकि वो ही उसमें कैमरामैन थे, तो उन्होंने वहां से मुझे नोटिस किया था और फिर उन्होंने मुझे घर पे आके बोला कि ये रोल सिर्फ प्रतिभा करेगी, बस दैट्स ऑल।
1: जी। तो इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास याद साझा कीजिए, दोनों लोग साथ में जाना, अमूमन अलग अलग शूटिंग पे जाते होंगे
2: नहीं,
1: लेकिन
2: तब
1: इस
2: हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मम्मी
1: हाँ
2: आई थी उनको संभालने के लिए, मम्मी पापा मेरे, और हम दोनों वहीं पे रहते थे जहां पे लोकेशन था,
0: मनोर में थी
2: मनोर में
0: लोकेशन,
2: थी।
0: वही होटल ले रखा था हमने
1: जी जी जी
0: सब लोगों ने,
1: अच्छा।
0: पूरी कास्ट क्रू ने, तो वहीं होटल रहे थे, वहीं बाजू में ही गांव था, तो वहीं करते थे,
2: लेकिन
0: बच्चे भी साथ में थे।
2: बहुत सुंदर थी वो
1: जी
2: फिल्म।
1: तो आपने कहा बच्चे छोटे थे, और तो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, सामंजस्य जिसको कहेंगे, क्या कैसे आप सामंजस्य बिठाती थी
2: तो उस
1: शूटिंग के लिए?
2: वक्त तो मतलब छोटे थे ही, ऑफ कोर्स तो करना पड़ता था ना उनके साथ काम, मम्मी उनको भेजती थी स्कूल, और फिर मैं यहां से और क्या ही कर सकती हूँ, फोन ही कर सकते
1: कि बच्चे जब
2: हैं।
1: मिलते थे
2: हाँ
1: रोते थे तो फिर
2: नहीं,
1: दिल,
2: रोते भी नहीं थे वो, बड़े उस तरह के
1: अच्छा
2: बच्चे हैं कि मतलब समझदार है,
1: उनको पता था कि
2: उनको पता
1: मम्मी पापा
2: था।
1: को आगे बढ़ना है
2: पर
1: ऐसे साथ में।
2: एक दिन मुझे, मैंने वो जो उस ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जो मैं अपने मायके के लिए जाने के लिए रोती हूँ, तो वो उसको, बिल्कुल ही छोटा था मेरा बेटा, तो बिल्कुल ही, मेरे ख्याल से 5-6 साल का होएगा, तो मुझे बोल रहा है मम्मी तुम एकदम छमक छल्लो लग रही हो। ये शब्द भी उसको पता नहीं कहाँ से मिला।
1: जी। तो बच्चे देखते रहते हैं तो और बहुत कुछ सीखते हैं, टेलीविजन
2: हाँ
1: से सीखते हैं। तो यहाँ पर बात बच्चों की है, बच्चों के लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
2: हाँ बिल्कुल, लकड़ी की काठी बहुत सुंदर गाना है।
3: लकड़ी

0: गुलजार साहब के साथ आपने काम किया है।
1: हाँ, उनके साथ मैंने काम किया तहरीर प्रेमचंद की जो जी सीरीज आई थी प्रेमचंद के ऊपर। हाँ जी, तो उसमें मैंने एक तो ठाकुर का कुआं की थी और दूसरा गोदान की थी।
2: पंकज कपूर के साथ कपूर जी थे साथ में काम किया था।
0: और गुलजार साहब का कोई उसमें हस्तक्षेप था एक्सपीरियंस उनके साथ? कोई बात बताइए उनके साथ अनुभव कुछ। हाँ,
1: मतलब वो तो जैसे व्हाइट कपड़े पहन के आते थे ना सुबह और शुरू हो जाते थे यहाँ से लकड़ी उठाओ, ये करो, इसको ये ठीक करो, मतलब तो ऐसे देवदूत जैसे लगते थे वो। मतलब उसमें घूम रहे देवदूत स्टेज पे, यहाँ पे, वहां पे। और फिर मुझे जब वो बोलते थे तुम हंस दो बस एक बार, बस
0: अच्छा।
1: मेरा दिन बन जाता है। फिर वो मतलब बहुत सारी चीजें है वो उनका, वो आलू वहां पे भून के खाना, शकरकंदिया भून के खाना, वहाँ गांव गांव था ना,
2: बड़ा बेटा पेट में था उस वक्त।
1: हाँ, उस वक्त अच्छा, सौम्य पेट में था। हाँ
0: जी,
2: गुलजार साहब का तो ऐसा लगता है जब वो पैदा हुए थे तो भी सफेद कुर्ता पजामा ही था।
0: जी जी,
2: पहने हुए ही पैदा हुए, क्योंकि कभी और ड्रेस में देखा ही नहीं हमने,
0: जबकि गानों के कितने सारे रंग हैं।

0: ये हमारी शरारतें क्या होती थी, अमरूद चुरा लिए, आम चुरा लिए, बेरे
1: मूलियां चुरा
0: चुर,
1: ली,
0: मूलियां चुरा ली, गाजर
1: मूली
0: गाजरें चुरा ली, मतलब खेती बाड़ी में जो चोरियां कर ली, लोहा चुरा लिया
1: अरे
0: है, लकड़ियां काट के ले आए चोरी से। तो ऐसे ऐसी चोरियां थी हमारी, और ऐसी ऐसी शरारतें थी। बकरी को चराने ले गए, गाय को चराने ले गए, तो वहां से लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके, गोबर वगैरह इकट्ठा करके ले आए। हमारा तो इसी में पूरा बचपन बीत गया, खेल पतंगे खेल के, और गेम बहुत खेले हमने बचपन में। आज के बच्चे गेम जानते भी नहीं है, वो लुकम छिपाई, पकड़म पकड़ाई, पतंग खेलना, ये काठ कटम्बर लोहा
1: पिट्ठू
0: लंबर,
1: पिट्ठू गरमा
0: हाँ,
1: गरम।
0: कोकला खिपा खिजे में रात आई जे, जेड़ा आगे पीछे देखे उसकी शामत आई जे।
1: हाँ
0: बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो, फिर वो डिब्बियां, ढक्कन, ये सब खेलते थे हम, बड़ा खजाना था। आज तो देखो कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन उस वक्त में वो हमारा खजाना था। कंचे बंटे जो होते हैं ये, और इस तरीके की चीजें इकट्ठा
1: गुठलिया आम
0: करना, गुठलियां, हाँ,
1: की
0: इमली की गुठलियां,
1: हाँ
0: वो भी बहुत,
1: आम की
0: हाँ,
1: गुठलिया,
0: बहुत
1: इमली की
0: कीमती
1: गुठलिया।
0: चीजें थी ये हमारे लिए। तो ये सब इसी में बचपन बीता है, जो कि बहुत बेशकीमती मैं बोलता हूँ, कि बहुत अमीर बचपन में बोलता हूँ इसको, रिच बचपन, जिसमें एक्सपीरियंस ज्यादा थे। बेशक पैसा नहीं था, लेकिन इतने एक्सपीरियंस थे और इतना बढ़िया बचपन था कि मैं तो तरस गया हूँ अपने बच्चों को वो जिंदगी देने के लिए।
1: जी
0: काश वो भी ले पाते वो सब, लेकिन बॉम्बे में बहुत मुश्किल है, और आज के मोबाइल और इस जमाने में तो और भी मुश्किल है।
1: बिल्कुल
0: हमारा बचपन जो बीता है वो तमस,
1: जी
0: कथा सागर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये चीजें देख के कौन सा
1: बड़े
0: था
1: हुए
0: वो,
1: हम लोग।
0: है
1: मालगुड़ी डेज,
0: मालगुड़ी
1: मालगुड़ी,
0: डेज,
1: हाँ
0: यस,
1: हाँ
0: गालिब का एक सीरियल था,
1: हाँ मिर्ज़ा गालिब,
0: मिर्जा
1: मिर्ज़ा
0: गालिब,
1: गालिब
0: फौजी,
1: वो, हाँ
0: शाहरुख खान वाला,
1: हाँ
0: फिर वो एक
1: फौजी
0: दो और थे जो सर्कस,
1: सर्कस के, हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें।
1: हाँ तो ये जो दूरदर्शन वाले धारावाहिक थे ये तो अलग थे। तब उस समय मतलब एक्टर की बजाय लोग किरदार के रूप में जानते थे, जैसे
0: हम
1: सीरियल
0: लोग,
1: के नाम से हम लोग, हाँ हम
0: यस
1: लोग से
0: यस,
1: याद आया
0: बुनियाद,
1: कि बड़की बड़की और छुटकी, वो किरदार से हम लोग जानते थे।
0: हाँ,
1: और मुझे लगता है कि आप ऐसे एक्टर हैं जिनको आपके नाम से ज्यादा आपका किरदार ज्यादा जाना जाता है। मतलब मैंने अभी जब देख रही थी तो आपकी अनगिनत फिल्मों में लोग किरदार के नाम से जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब किसी किरदार से खास तौर से आपको बुलाया जाता है, कहा जाता है तो?
0: नहीं बिल्कुल, इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हुई है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो अभी तो खैर नाम से भी जानने लग गए हैं सब लोग, और कोई ये बोलता है कि आपका नाटक देखा वो वाला बहुत अच्छा, तब
1: तो
0: और
1: बहुत
0: ज्यादा
1: कमाल।
0: खुशी होती है। या फिर मेरी डायरेक्ट की हुई एक फिल्म है जो कि एक कल्ट फिल्म बन चुकी है हरियाणा में, उसकी बात करता है कोई तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
1: जी
0: तो ऐसे ऐसे काम जो आपने, आप पब्लिकली ज्यादा नहीं फ्लरिश हुए लेकिन आपके दिल के करीब हैं कुछ काम, या तुगलक नाटक है जैसे, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो देखा कोई बोलता है तो मजा आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि वाह, किसी एयरपोर्ट पर या कहीं किसी
1: जी जी
0: किसी और
1: जी
0: शहर में कोई ऐसे बोल देता है, तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो
1: जी
0: बढ़िया हो रहा है।
1: बिल्कुल। नाटक का जिक्र किया आपने तो हमें याद आया कि एक नाटक किया था जो लगभग 3 घंटे चला था, वो कौन सा नाटक था और उस पर आपने दर्शकों को हंसाया, जिसमें मुकेश तिवारी भी है
0: अच्छा, वो बड़े न
1: वो?
0: खेले छोटे खेल,
1: जी।
0: हाँ, वो एक फ्रेंच प्ले है, डरियो फो का लिखा हुआ, आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिनबॉल गेम, उसका हिंदी अनुवाद है,
1: जी
0: और उसमें मेन रोल मैंने किया था लॉफ्टी का, और उसमें 2.5 घंटे का नाटक था वो। तो ये समझो कि 2.5 घंटे तक तो लगातार हंसाया, फिर 10 मिनट रुलाया,
1: क्या
0: फिर
1: बात।
0: आखिरी के 5 मिनट फिर हंसाया। तो ऐसा उसका प्रोसेस था, और वो कहानी भी ऐसी थी, तो बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा था वो। मुकेश तिवारी डबल कास्ट में था मेरे साथ,
1: जी
0: मतलब एक दिन मैं करता था, एक दिन वो। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज अभी तक का मेरा सबसे एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहा है वो।
1: जी
0: वो हुआ, आइंस्टाइन हुआ, या
1: परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बहुत सारी फिल्में आपके खाते में हैं। गंगा जल जो शुरुआती फिल्म है, और प्रकाश झा जिसके डायरेक्टर हैं, तो गंगा जल की बात आप बताइए हमारे श्रोताओं को, कैसे जुड़े प्रकाश झा से? ये आपके शुरुआती दिन थे और संघर्ष के भी दिन थे।
0: प्रकाश झा का मैसेज आया था मेरे पास, फिल्म करने वाला हूं मैं, तो मेरे बारे में सुना किसी से उन्होंने, एनएसडी के ही कई लोग बता देते हैं ना, तो मैं गया, तो बस उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने बोला कि ये रोल है एक सुंदर यादव का, ये साधु यादव का बेटा है, साधु यादव जो है मेन विलेन है इसमें, तो हम उनके बेटे हो,
1: जी
0: बिगड़ैल बेटे। तो मैंने बोला कि ठीक है, करता हूँ भी, कर लियो मैं।

0: हो गई। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट दे दो। तो बोला स्क्रिप्ट तो मैं अजय देवगन को ना दूं। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं यहीं पढ़ लेता हूँ आपके ऑफिस में। बोले हाँ यहीं पढ़ लो। लो तो मैंने वहां वह बैठ करके 3 घंटा स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने
1: जी।
0: और पढ़ करके मैंने बोला कमाल रोल है जी मैं करूंगा। हालांकि उसमें डायलॉग नहीं थे कुछ भी ज्यादा और वो लिखा हुए में सुंदर यादव कुछ भी नहीं था, लेकिन फिल्म करते करते करते करते मेरे सीन लिखे जाने लगे
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: हाँ और मेरा रोल बढ़ता गया बढ़ता गया और वो मेन विलेन में आ गया तकरीबन तकरीबन क्या एक्चुअली में।
1: जी
0: तो वो प्रकाश झा की खासियत है कि उन्होंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है इसकी, तो उन्होंने मेरे रोल को बहुत अच्छे से उभारा और पूरा फुटेज दिया।
1: जी बिल्कुल।
0: गाना भी था, एक आइटम सॉन्ग था जो ये संजय दत्त की वाइफ है मान्यता, उन्होंने डांस किया था उसपे।
1: जी अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है सुनवाया हम।
0: यहाँ तो मेरा फिल्म है ना ये, एक सिंग इज किंग का एक गाना बड़ा अच्छा है।

0: सच बताऊं तो विविध भारती में जब मैंने जिक्र किया कि यशपाल जी आ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी, बोले गंगा जल वाले, गंगा जल आपके नाम के साथ कैसे जुड़ गया है?
1: तो जुड़ गया है। अरे वो सुनिए, मैं सिक्किम में

0: शूटिंग कर रहा था सिक्किम में, पेलिंग करके एक जगह है जहाँ डैनी
1: जी जी जी
0: डैनी साहब हैं जहाँ के,
1: हाँ
0: तो पेलिंग में शूटिंग कर रहा, जानू बरुआ डायरेक्टर थे, और वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची मिली मुझे और बोल रही, अंकल अंकल आपने गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हो। मैं बोला क्या देखा बेटा तूने, मैंने समझ नहीं आया, तारीफ कर रही है कि बेइज्जती कर रही है। तो मैंने बोला बेटा क्या देखा तुमने, अरे वो जो अजय देवगन के साथ किया ना आपने आँख फोड़ने वाला, बहुत अच्छा था। मैं बोला अच्छा गंगा जल की बात कर रही है, ये भी
1: क्या
0: एक
1: बात है।
0: तरीका है बच्चों का।
1: जी
0: मेरी वाइफ
1: जी
0: भी प्रतिभा नहीं देखने देती बच्चों को, गंगा जल देखने नहीं देती
1: अच्छा
0: ना, बोल रही है बहुत वायलेंस है, बहुत वायलेंस है।
1: वो छोटे छोटे
0: और
1: बच्चे थे, मैं एक बार
0: वाकई
1: उनको
0: में वो
1: देखा।
0: पिस्तौल लेकर के ठा ठा ठा ठा करते थे ना, जब ऐसी फिल्में देख करके, तो मुझे भी अपने आप पे ना ग्लानि हुई कि यार यशपाल तेरी वजह से बच्चे कितने बिगड़ रहे होंगे ऐसे, तो ये ऐसे रोल मत कर। तो मैंने ना वाकई कॉन्शियसली उस तरीके के रोल करना बंद कर दिया था। अब कई बार नहीं पता होता और करना होता पड़ता है, जैसे राउडी राठौड़ है या कोई जिसमें वायलेंस बहुत है तो करना पड़ता है, लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं खुद नहीं करूंगा ऐसा कुछ
1: जी।
0: जिसमें बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़े।
1: चमेली में आप बने थे केपी सिंह, उसके बारे में बताइए, वो उस भूमिका के बारे में बताइए। करीना कपूर इस फिल्म में थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी
0: बहुत
1: हमने
0: प्यारी
1: देखा।
0: फिल्म थी, सुंदर फिल्म थी, और मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत कमाल रोल था मेरा, क्योंकि बहुत लोगों ने चमेली का नाम लिया है। छोटा रोल लेकिन प्रभाव छोड़ने वाला रोल था, क्योंकि वो करीना कपूर की और राहुल बोस की सारी समस्याएं सॉल्व कर देता है
1: जी।
0: आखिर में आकर के। सुधीर मिश्रा मेरे फेवरेट डायरेक्टर
1: डायरेक्टर
0: रहे हैं, और जब भी उन्होंने कोई भी रोल दिया, मेरे ख्याल पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिर ये था चमेली था, फिर उसके बाद ये साली जिंदगी, इरफान खान भी थे,
1: जी
0: तो इस जो भी रोल दिए उन्होंने मुझे उन पर पूरा आंख बंद करके भरोसा रहता था कि श्याम बेनेगल हुए, प्रकाश झा हुए, सुधीर मिश्रा हुए, ये
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: भी रोल देंगे, अनुराग कश्यप हुए, कोई भी रोल देंगे तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा, मैंने बिल्कुल नहीं पूछूंगा।
1: जी जी
0: जी
1: क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना है। सुनवाए हम
2: डोली में बिठाई के का
1: आप दोनों गा के सुनाएंगे तो

ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजे। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

ये माना जिंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं यारों चार दिन भी। FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, आज आपके साथ है युवाणी कार्यक्रम में आपका रेडियो फ्रेंड एंड होस्ट RJ महावीर। श्रोताओं, ये मशहूर शेर लिखा था फिराक गोरखपुरी ने जिंदगी के मायने के बारे में। जिंदगी छोटे से हिस्से को बहुत ही सुकून भरे, यानी यूँ कीजिएगा अपने अहम को आगे न रखकर उन बेहतरीन पलों का मिजाज समझकर आनंद लेने की बात कही है। जिंदगी चाहे चार दिन की भी क्यों न हो, ढंग से जिया जाए तो ये भी पल बहुत होते हैं जीवन के लिए।

श्रोताओं, तो बात करते हैं आज की चर्चा की। युवाओं में अक्सर देखा गया है कि बाइक चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। ओवर स्पीड के कारण कई बार वे शारीरिक क्षति के भी भागीदार बनते हैं। और बात करता हूँ उनके जीवन के बारे में, तो नया खून है तो अपने आप में होगा ही जोश, तो लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। जीवन के मायने समझने हैं और अपने अनमोल जीवन को हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखना है। श्रोताओं, यदि लापरवाही करते हैं हमारे युवा मित्र, तो एक गंभीर समस्या बनती है हमारे लिए भी और आसपास के वातावरण के लिए भी। सोशल मीडिया को देखकर स्टंट करना और अपने दोस्तों को इंप्रेशन में लाने के लिए स्टाइल देना बाइक पर, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारे जीवन के लिए और दूसरों के लिए भी। तो बात करूँगा उनके बेहतर और आदर्श जीवन के लिए। तो ये चीज़ें हमारे जीवन को बेहतर नहीं खराब कर देती है। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जीवन को सरल तरीके से और अहमियत रूप से दें, अपने जीवन को अनमोल बनाएं, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है। और यदि ट्रैफिक नियमों का पालन हम करेंगे, स्पीड को कंट्रोल रखेंगे, तो भारत के आदर्श नागरिक वाली जो छवि है वो परिभाषित होगी। और साथ ही हम बात करते हैं आज के स्पेशल सेगमेंट फोन करे गीत सुने के बारे में। पहला जो हमारे पास संदेश आया है, अमर सिंह कॉलोनी नागौर से लिखने वाले मुकेश शर्मा और उनके मित्र, इन्होंने फिल्म

अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है मिर्ज़ा कॉलेज नागौर के पास में से अनवर हुसैन उनके साथी लिख रहे हैं। फिल्म आरजू का नगमा इन्हें सुनना है। आइए सुनाते हैं इनको इनकी पसंद का फिल्म आरजू का ये गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है तिगरी बाजार नागौर से, लिखने वाले मोहम्मद हुसैन जुगल किशोर और उनके साथी। इन्होंने फिल्म करण अर्जुन की फरमाइश भेजी है, तो सुनाते हैं इनको फिल्म करण अर्जुन का ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
5: अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है, लिखने वाले हैं श्री राम कॉलोनी नागौर से नंदनी जोशी और उनके परिवार वाले। इन्होंने फिल्म भूमि के नगमे की फरमाइश भेजी है, तो आइए सुनाते हैं इनको, इनकी पसंद का ये गीत।

सुन रही थी फिल्म भूमिका नगमा, और इसी नगमे की फरमाइश भेजी थी हमें गांव बोसरी से गोपाल राम। अगली फरमाइश आई है राठौड़ी कुआं नागौर से लिखने वाली मनीषा और उनके परिवार वाले। इन्होंने फिल्म कहो ना प्यार है का नगमा सुनने की फरमाइश भेजी है। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, जहां कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: इंदौकली गांव से केसर सिंह और उनके मित्रों ने फरमाइश भेजी है फिल्म बेताब के नगमे की। आइए सुनाते हैं इनको, इनकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने के अंतर्गत और भी फरमाइशें हमारे पास आई है। समय अभाव के कारण हम उनकी फरमाइश नहीं सुना पाएंगे आज, लेकिन फिर भी नाम बोलेंगे उन सभी के। अब्दुल सत्तार मेजर करीम नगर नागौर से फरमाइश भेज रहे हैं, धर्मवीर फिल्म की। तेलेवाड़ा नागौर से पप्पू भाई राजेश कुमावत और उनके मित्रों ने फरमाइश भेजी थी फिल्म वर्दी की। अनूप सिंह और उनके मित्रों ने गाँव अड़ाई से फरमाइश भेजी हमारे पास, राजा औरंग की। नियाज मोहम्मद ने लोहारपुरा नागौर से फरमाइश भेजी। चांद मोहम्मद अजमेरी गेट से फरमाइश भेज रहे हैं, और शास्त्री नगर से कुंभाराम चावला और उनके मित्रों ने फरमाइश भेजी फिल्म तीसरी कसम की। धन्यवाद आपको कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अगले समय यानी अगली बार आपको हम आपकी पसंद जरूर सुनाएंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

युवावाणी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए, लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

0: तिनकों से बने पल, पलों ने मिलकर वक्त को बुना। हर पल कोई किसी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए खुदा ने यादों को चुना। जैसे ही मेरी प्यारी सखियों ने अपनी रेडियो सखी को याद किया, तो आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी राजेश्वरी। सभी श्रोताओं का और मेरी प्यारी सखियों का महिला जगत प्रोग्राम में स्वागत है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की बात के साथ, और आज की बात में हम शामिल कर रहे हैं मानसून में घर को कैसे हाइजीनिक रखें। सखियो, अभी बारिश का सीजन चल रहा है, हालांकि अभी तो नहीं है लेकिन थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, और ये सावन चल रहा है, तो सावन तो लगभग पूरा बरसता ही अच्छा लगता है, लेकिन मानसून के मौसम में हमारे घर में नमी रहती है, तो नमी में हमारे घर में काफ़ी ऐसे नुकसान भी होते हैं, तो किस तरह से आप उस नमी को दूर कर सकते हैं और अपने घर को बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं। देखिए, मानसून में नमी और सीलन के कारण घर में बैक्टीरिया और फंगस तेजी से फैलते हैं। घर को हाइजीनिक रखने के लिए फर्श पर जो डिसइंफेक्टेड या फिर नमक डालकर आप पोछा लगाएं पानी में तो अच्छा रहता है। हालांकि एक और रीज़न भी है, पानी में अगर नमक डालकर हमेशा आप पोछा लगाएंगे तो घर की जो नेगेटिविटी है वो चली जाएगी, यानी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो चली जाएगी, और साथ ही पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए है ना फायदे की बात। तो नमक तो अपने घर में है ही, और जब भी हम पोछा लगाएं तो एक चम्मच या फिर आधा चम्मच पानी में नमक जरूर डालें। साथ ही गीले कपड़ों को तुरंत ही सुखाएं, जो गीले कपड़े हैं उनको अंदर ना लाएं, उन्हें धूप में सूखने दें और पानी में बिल्कुल भी जमा ना होने दें। अपने घरों के आसपास पानी ना जमा होने दें ताकि मच्छर ना पनपे। किचन और बाथरूम को पूरी तरह से सुखाएं और साफ रखें। ये नहीं कि आप नहाकर आएं और पानी पूरा जो बाथरूम है वो फैला फैला सा रहे, तो उसमें भी सीलन रहेगी और आपका बाथरूम जो है वो खुद ही मतलब धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। जो टाइल्स है उनको भी नुकसान होता है, साथ ही दीवारों को भी होता है, इसलिए आप उसे वाइपर से सुखाकर उसे भी हाइजीनिक यानी बाथरूम को भी हाइजीन कर सकती है, साथ ही साफ रखें। साथ ही अब आप फर्श और कमरों की सफाई किस तरह से कर सकते हैं, देखिए, पानी में एंटीसेप्टिक लिक्विड या फिर थोड़ा सा नमक डालकर पोछा लगाएं, ये बात तो बताई थी। साथ ही जो कारपेट है और भारी रक्स है उनको आप हटाकर रखें, क्योंकि इनमें नमी जल्दी आती है, यानी सोफ़ा है, सोफे के पास बिछाने की जो कारपेट है, रक्स होते हैं ज़्यादा, जो मोटे कारपेट जैसे ही रक्स होते हैं उनको जो है आप हटाकर रखेगी ऐसे टाइम में, यानी मानसून के टाइम में। हालांकि ये सर्दी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन अभी के लिए मानसून के मौसम में इनमें फंगस सबसे ज़्यादा लगते हैं और जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए, और ये नमी को भी ज़्यादा पकड़ते हैं, इसलिए हमें ऐसे टाइम में यानी मानसून के टाइम में अपने घर में रक्स और कॉर्पेट को हटा कर रखने चाहिए। साथ ही इन्हें अगर आप रखते भी हैं तो हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार जो है धूप में सुखा दें, ताकि जो भी बैक्टीरियाज हैं वो धूप से चली जाएंगे। साथ ही कमरों में ताज़ी हवा के लिए वेंटिलेशन बनाए रखें। घर के खिड़की दरवाजे हैं उनको भी धूप जब आए सुबह के टाइम में 10-11 बजे, तो आप अपने घर की खिड़कियां और घर के जो दरवाजे हैं उनको एक बार के लिए खुला छोड़ दें, ताकि आपका घर जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। साथ ही नमी से बचने के लिए अलमारियों में कपूर या फिर सिलिका जेल आती है मार्केट में, उसे आप घर लाकर अलमारी हैं उसमें रख सकती है, कपूर भी रख सकती है, क्योंकि जो ये कबड़ वगैरह होती है अपने घर में वो सीलन ज़्यादा पकड़ती है, इसलिए। साथ ही किचन और खाने की सुरक्षा की हम बातें करेंगे इस ब्रेक के बाद।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे, अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: फाइनेंशियल

0: एजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सखियों, हम बात कर रहे थे मॉनसून में घर को किस तरह से आप हाइजीनिक साफ सुथरा रख सकती हैं। तो अब बारी है किचन की। घर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किचन। तो किचन है वो खाने की सुरक्षा को भी साथ में रखता है। तो खाना बनाने के बाद स्लेब और बर्तनों को तुरंत ही साफ करें ताकि आपका किचन अच्छा रहे। हमेशा उबला हुआ फिल्टर किया हुआ पानी ही आप पिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही खुले में रखे फल या फिर बाहर का खाना खाने से इस टाइम में बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम में यानी मॉनसून के सीज़न में मच्छर ज़्यादा पनपते हैं, मक्खियाँ जो घरेलू मक्खियाँ हैं वो भी ज़्यादा पनपती हैं। तो जितना हम खुद से ही अपना ख्याल रखेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि खुले में रखे फलों पर मक्खियाँ भी बैठती हैं, जो मच्छर हैं वो भी आकर बैठते हैं। और खाने को भी खुला ना रखें, ढककर रखें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही नमी से बचाने के लिए डिब्बों में रखे जो अनाज हैं उनको भी, जो एयर टाइट डिब्बे आते हैं जैसे दालें हैं उन सबको, चावल हैं, इनको जो है एयर टाइट डिब्बों में रखेंगे किचन में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये ख़राब भी नहीं होंगे। साथ ही सीलन और कपड़ों की देखभाल भी करनी चाहिए। देखिए, ऐसे टाइम में कपड़ों में भी सीलन रहती है तो उनमें बदबू सी, एक अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए आप जो है कपड़ों को भी धूप में पूरा सूखने के बाद ही घर में ले जाएं, अपने समट कर रखें तय करके, ताकि वो सही से रहे और उनमें से कोई भी जो है स्मेल ना आए। साथ ही गीले कपड़ों को जो है बास्केट में भी ना छोड़ें। अब कई बार होता है ना, हम बाथरूम में ही छोड़ के आते हैं, कपड़े गीले धोए हुए हैं लेकिन फिर भी हम वहीं छोड़ आते, सुखाते नहीं है, भूल जाते हैं या फिर बाद में सुखाते हैं या फिर पंखे के नीचे सुखाएं तो भी बेटर होता है। साथ ही अलमारी में नमी सोखने वाली जो सिलिका जेल पैक आते हैं या फिर कपूर जेल हैं उनको यूज़ करें, ताकि वो अलमारी की जो सिलन है या जो बदबू है वो दूर हो जाए। साथ ही अपने जो बाहर ऐसे टाइम में अपने जो जूते हैं वो पूरे घर में लेकर ना घूमें, क्योंकि जूतों के साथ भी कई बैक्टीरियाज कीचड़ के साथ पनपते रहते हैं तो वो भी हमारे साथ चिपक कर ही हमारे घर में आते हैं। तो जितना हम खुद से ख्याल रख सकते हैं अपने घर को तो खुद ही साफ सुथरा रख सकते हैं ना। तो अपने घर को गंदा बिल्कुल ना करें और सुंदर अच्छा बनाए रखें। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट

0: अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करके सामाजिक आर्थिक विकास करना है। मुख्य उद्देश्यों और विशेषताओं की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: सखियों, हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों और विशेषताओं की बात करें तो बुनियादी ढांचा स्कूलों, अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों, खेल सुविधाओं और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। क्षेत्र विस्तार की बात करें तो ये कार्यक्रम अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों, नगरों, गांवों के समूह में लागू किया जाता है। जीवन स्तर में सुधार करना, पिछड़ापन दूर कर अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना ही इसका उद्देश्य है। ये पहले बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता था, जिसे बाद में पुनर्गठित करके प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम किया गया। इसके तहत मिलने वाली राशि का उपयोग विशेष तौर पर उन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए किया जाता है जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म सफर की ओर, सुनवा देते हैं ये गीत।

सखियों, अभी आपने प्यारा सा गाना सुना था। हमने लिया था कितने दूर कितने पास फिल्म से। आवाज़ें थी रूप कुमार और जयश्री की। आप प्रोग्राम में स्वास्थ्य टिप्स की बात करें तो आजकल जो देखने को आ रहा है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यूट्राइन कैंसर की, गर्भाशय कैंसर। ये क्यों होता है? देखिए, गर्भाशय का कैंसर तब होता है जब गर्भाशय की सेल्स के डीएनए में बदलाव या फिर म्यूटेशन, उत्परिवर्तन होता है। तब ये बदली हुई सेल्स तेजी से बढ़ने लगती है और अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अनियंत्रित होकर ट्यूमर बना लेती है। लेकिन ये मुख्य रूप से शरीर में जो हार्मोन इम्बेलेंस होता है, विशेषकर एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, तभी होता है। और अन्य जोखिम और कारक भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हर एक महिला को इसकी जानकारी होनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। इसमें मुख्य कारण तो देखिए कोई वैसे स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन ये मुख्य रूप से शरीर में जो हार्मोन इम्बेलेंस होता है उसी से होता है, विशेषकर एस्ट्रोजन हार्मोन। साथ ही हार्मोन असंतुलन की बात करें, शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा अधिक होना और प्रोजेस्टेरोन का कम होना गर्भाशय की जो एक लेयर होती है उसको बढ़ाता है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। साथ ही मोटापा जो होता है, देखिए जो एक्स्ट्रा चर्बी है, वजन बढ़ना शरीर में एस्ट्रोजन के स्तर को जो नेचुरल रूप से बढ़ा देती है, उससे भी कैंसर होने का खतरा रहता है। साथ ही उम्र, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ये प्रॉब्लम आमतौर पर 50 वर्ष की उम्र के बाद ही अधिक होती है यूट्राइन कैंसर की। जिन महिलाओं ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है। साथ ही जो अनुवांशिक कारण होते हैं वो भी जेनेटिकली हो सकता है। परिवार में कैंसर का इतिहास या फिर लिंच सिंड्रोम जैसे जो जेनेटिकल बीमारियां होती हैं, उससे भी जो है यूट्राइन कैंसर होता है। तो हर एक महिला को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, घड़ी की टिक-टिक यही इशारा कर रही है कि प्रोग्राम जो है अपनी समाप्ति की ओर है। आप अपनी रेडियो सखी राजेश्वरी को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे, तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।

महिला जगत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरवी चैनल है। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का 12वां सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक में श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए एक सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 और 2022 के बीच भारत में प्रदूषण उत्सर्जन में 37% से अधिक की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अब तक मिली जानकारी के आधार पर गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। इसका नेटवर्क पंजाब से महाराष्ट्र, गुजरात और सिलीगुड़ी समेत 10 से अधिक राज्यों तक फैला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिशुओं के जैविक माता पिता का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5,00,000 रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। पुलिस महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से एक AK-56, एक SLR, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 146 जिंदा कारतूस, एक वॉकी टॉकी, 8 मोबाइल फोन, एक वाईफाई डोंगल और नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं। केरलम में विजयनगरम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधा निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है, जो इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विजयनगरम से यूरोप के लिए पहले जहाज को 2 कंटेनरों के साथ रवाना किया। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में

0: उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। उन्नति ने म्यामा की थेत हतार थुजार को हराया। महिला डबल्स में सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम, वहीं मिक्स डबल्स में आशीष सूर्या और अमृता प्रमुदेश तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने श्रीलंका को गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

लबों से हमें कहना आता नहीं, काश वो हमारे दिल की बात कुछ यूं ही समझ ले। ये फिल्म संगीत का पहला नगमा श्रेया घोषाल और साथ में है इनके अभिजीत भट्टाचार्य, फिल्म बेशरम में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह को फिल्म क्रेचर 3D में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी

0: nearest Manappuram Finance branch per visit kare ya toll free number 1-800-420-2233 per call kare.
1: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेतीबाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, जहां कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

लीजिए सुनिए समंदर खान के स्वर में ये अगली लोक प्रस्तुति कार्यक्रम माटी के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम मार्टे के स्वर। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर से 2,340 करोड़ रुपए के 941 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 20 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की, सभी दलों से सदन चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। राज्य में बीते 24 घंटों में 62 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, कल 10 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रदेश को 2,340 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 941 शिलान्यास और लोकार्पण शामिल है। जयपुर में HCM रीपा में आयोजित कार्यक्रम में श्री शर्मा ने श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के 1,32,000 से अधिक लाभार्थियों को 154 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि DBT की। इस दौरान श्री शर्मा ने 71 PME बसों को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर में सुरक्षा सखी और युवाओं के साथ संवाद भी किया। बिड़ला सभागार में हुए इस कार्यक्रम में श्री शर्मा ने कहा कि सुशासन के लिए कानून व्यवस्था का पुख्ता होना जरूरी है।
1: आज का यह कार्यक्रम सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये भावना, ये सोच हमारी कार्यप्रणाली का आधार है, क्योंकि अच्छी कानून व्यवस्था अगर होगी तो हमारे प्रदेश का विकास होगा। पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें कि उन्होंने एक जनजागरण के माध्यम से हर थाने में, हर वीट में ऐसे युवा सदस्य निकाले जो उस थाने का सहयोग कर सकते हैं। ऐसी हमारी सुरक्षा सखी निकाली उसमें से जो वो थाने का सहयोग कर सकती हैं। समाज की सक्रिय भागीदारी में उनका सहयोग आवश्यक है।
0: मुख्यमंत्री ने इससे पहले VC के जरिए राज्य उन्नति की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को हर जन परिवेदना का संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेने और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने विभिन्न जिलों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही राजस्थान संपर्क और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के परिवादियों से सीधे संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी विकास कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में करवाने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में आज जयपुर में सर्वदलीय बैठक हुई। 16वीं राजस्थान विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू होने वाले छठे सत्र से पहले आज ये बैठक बुलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के सदस्यों से सदन चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। श्री देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त करने का माध्यम है। सदन का सुचारू संचालन सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री देवनानी ने भी आश्वस्त किया कि चर्चा में बोलने का सभी को पर्याप्त समय दिया जाएगा। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान मौजूद रहे। इनके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के डॉ सुभाष गर्ग, बहुजन समाज

0: पार्टी के मनोज कुमार न्यांगली, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चंद और विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा भी उपस्थित रहे। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने का आश्वासन दिया गया, साथ ही कहा कि मर्यादापूर्ण तरीके से सदन में बात रखी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जी पॉलिसी बनाने वालों के खिलाफ कृषि विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि खरीफ 2026 के लिए टोंक के मालपुरा और जयपुर के शाहपुरा से फर्जी फसल बीमा कराने की सूचना जांच में सही पाई गई। इसके बाद फर्जीवाड़ा करने वाले इन किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन किसानों ने भूमि रिकॉर्ड में फेरबदल कर नकली पॉलिसी बनाई थी। इसके अलावा वास्तविक क्षेत्रफल फसल के बजाय दूसरी फसल का बीमा करवाया जा रहा था। श्री गोयल ने कहा कि ऐसी पॉलिसियां जारी करने में शामिल ई मित्र संचालकों, दलालों और बीमा कर्मचारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कृषि आयुक्त ने बताया कि इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 53 RAS और 40 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से देर रात इस बारे में आदेश जारी किया गया। साथ ही नए पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तबादला सूची में राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के सचिव सहित कई जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर और सहायक कलेक्टरों को बदला गया है। नए प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को विभिन्न जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से संबद्ध करते हुए प्रशासनिक और चुनावी जिम्मेदारियों से जोड़ा गया है। राजस्थान पुलिस की ओर से लोगों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतने और सतर्क रहने की अपील की गई है। जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर में उपाधीक्षक सुधीर चौधरी ने निजता का ध्यान रखने और फेस ऑथेंटिकेशन की सुरक्षा का उपयोग करने की सलाह दी है।
1: लोग अधिकतर सोशल मीडिया हैंडल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स आदि यूज करते हैं और उस पर प्राइवेसी का वो ध्यान नहीं रखते, इसकी वजह से साइबर क्राइम फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। आप लोगों को उस पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा कर रखना चाहिए। आपके फेस रिकॉग्नाइजेशन का कोई ऑप्शन आता है वो आपको रखना चाहिए। और जो साइबर फ्रॉड करने का सबसे आसान तरीका होता है OTP द्वारा। OTP मांगने के भी कई तरीके होते हैं। लोग बैंक फ्रॉड के नाम पर, KYC के नाम पर कोई लिंक भेजकर या कोई मोबाइल नंबर गलत डल गया बोल करके OTP आपसे मांगते हैं और OTP देने के बाद में आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। फिर आपको काफी लंबे समय के बाद इन चीजों का पता लगता है और आप अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप जल्दी से जल्दी 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सीकर इकाई की ओर से आज अयोध्या साइबर क्राइम थाना के 4 पुलिसकर्मियों को 2,80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ACB सीकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि इन आरोपियों ने अयोध्या में दर्ज एक मुकदमे में से परिवादी के भाई का नाम हटाने की एवज में रिश्वत की ये राशि मांगी थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में बीते 24 घंटों में 62 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। हालांकि तेज बारिश में कमी आई है। दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर और सिरोही जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार कल अलवर, बारा, दौसा, भरतपुर और धौलपुर सहित 10 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट है। 20 से 23 अगस्त के दौरान भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। उधर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी अगले 2-4 दिन मानसूनी गतिविधियां सुस्त रहने के आसार हैं। हालांकि शेखावाटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून का अगला चरण अल नीनो के प्रभाव के कारण कमजोर रह सकता है। हरियाणा राजस्थान अभियान

0: के तहत प्रदेश में पौधरोपण के व्यापक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में बाड़मेर में आज जिला स्तरीय वन महोत्सव रखा गया। न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में हुए इस कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने हरित क्षेत्र के विस्तार के लिए जन भागीदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उधर जैसलमेर के राजकीय नर्सिंग कॉलेज में पौधरोपण कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर हरित राजस्थान का संदेश दिया। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 17 से 19 सितंबर तक होने वाले इस सम्मेलन में 40 से ज्यादा देशों की 500 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम की थीम पर रखा गया है। श्री कृष्णन ने कहा कि सम्मेलन में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया सहित 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। विभिन्न खेलों के 15 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें महिला बैडमिंटन डबल्स की प्रमुख जोड़ी ट्रिसा जॉली और पल्लेल्ला गायत्री गोपीचंद भी शामिल है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ईसा याहा अरुमेनायागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए चुना गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार खेलों के प्रोत्साहन और विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कॉरपोरेट संस्था और गैर सरकारी संगठन को दिया जाता है। प्रदेश में ई मित्र व्हाट्सएप पर उपलब्ध सरकारी सेवाओं का दायरा अब 51 से बढ़ाकर 103 हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि ई मित्र व्हाट्सएप के जरिए नागरिकों के लिए 100 से अधिक सरकारी सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से 2,340 करोड़ रुपए के 941 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 20 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की। सभी दलों से सदन चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। राज्य में बीते 24 घंटों में 62 स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज। कल 10 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बांके बिहारी शर्मा। जिले में बीते माह ग्रामीण सेवाओं, स्वास्थ्य, रोजगार, जल संरक्षण और कृषि से जुड़े कामों के साथ सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां जारी रहीं। ग्रामीण सेवा शिविरों से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और राहत मिली। वहीं पांचना बांध के पानी बंटवारे से जुड़े लंबे विवाद का समाधान हुआ। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने की कार्रवाई की। शिविर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का माध्यम बने। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप देने की दिशा में काम आगे बढ़ा। हर नागरिक के लिए आभा आईडी तैयार की जा रही है। जिले में अब तक करीब 13,70,000 आभा आईडी, 609 हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और 1,719 हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री दर्ज की जा चुकी हैं। आभा आईडी से नागरिक अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला खाद्य और औषधि नियंत्रण कार्यालय में 6 नए स्थायी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। नए अधिकारियों की नियुक्ति से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच और खाद्य सुरक्षा नियमों की पालना से जुड़े कामों को गति मिलने की उम्मीद है। प्रगति पथ पर गतिमान राजस्थान

0: पांचना बांध के पानी बंटवारे को लेकर करीब दो दशक से चला आ रहा विवाद सहमति से सुलझा। इसके बाद पांचना बांध की वितरिकाओं में करीब दो दशक बाद पानी प्रवाहित किया गया। इससे किसानों को सिंचाई व्यवस्था को लेकर राहत मिली और पानी की उपलब्धता को लेकर उम्मीद बढ़ी। जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। मुख्य समारोह मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में हुआ। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली 34 प्रतिभाओं को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। हर घर तिरंगा अभियान की भी जिले भर में धूम रही। करौली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पीजी कॉलेज से बस स्टैंड तक निकली यात्रा में 500 से अधिक युवाओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। हिंडौन, टोड़ा भीम और सपोटरा सहित अन्य क्षेत्रों में भी रैली, तिरंगा यात्रा और प्रभात फेरी आयोजित की गई। हाल ही में जिले में वीरांगना अवंती बाई लोधी का 196वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान उनके साहस, वीरता और देशभक्ति को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए याद किया गया, साथ ही प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। स्लीपर और लग्जरी बसों तथा स्कूल बसों की जांच के दौरान 18 वाहनों की जांच की गई। नियमों के उल्लंघन पर 15 वाहनों के चालान किए गए और 3 वाहन जब्त किए गए। श्रावण मास के चलते जिले का वातावरण पूरी तरह धार्मिक नजर आ रहा है। जिले के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहते हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में दर्शन और पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रावणी तीज के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित श्री मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में दिन भर धार्मिक माहौल रहा और श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इसी के साथ करौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर हूँ। 2340 करोड़ रुपए का खर्च वाला विकासरा 941 कामारी नींव रखी और पूरा फ्या काम जनता ने सौंपिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 20 अगस्त शुरू है वन वाला मानसून सत्र पहली आज सगली पार्टियां रा नेताओं की मीटिंग बुलाई। सदन चलावन माए सकारात्मक भूमिका रही अरज की। राज्य माए काल 10 जिला सारू बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 रो ऐलान। 15 खिलाड़ियां ने अर्जुन पुरस्कार देर नवाजा जावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज 2340 करोड़ रुपए का खर्च वाला विकासरा 941 कामारी नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। जयपुर में राखी जिया कार्यक्रम में श्री शर्मा श्रम विभाग री न्यारी न्यारी योजनावां रो फायदो लेवण वाला 132,000 बत्ता जना रा खाता में 154 करोड़ रुपयों बत्ती रकम भेजी। इन दौरान श्री शर्मा 71 ई बसा ने वर्चुअल तरीका रवाना की। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सुरक्षा सखियां और नौजवान सा गई बातचीत की। इस मौके वे कहो कि सुशासन सारू कानून व्यवस्था मजबूत वेवनी जरूरी है।
2: आज का यह कार्यक्रम सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये भावना, ये सोच हमारी कार्यप्रणाली का आधार है, क्योंकि अच्छी कानून व्यवस्था अगर होगी तो हमारे प्रदेश का विकास होगा। पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें कि उन्होंने एक जनजागरण के माध्यम से हर थाने में, हर वीट में ऐसे युवा सदस्य निकाले जो उस थाने का सहयोग कर सकते हैं। ऐसी हमारी सुरक्षा सखी निकाली उसमें से जो वो थाने का सहयोग कर सकती हैं। समाज की सक्रिय भागीदारी में उनका सहयोग आवश्यक है।
1: मुख्यमंत्री इनु पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए

देश में हाल ताई 2 करोड़ 29 लाख बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट कर दिया गया है। लारला साल सितंबर महीना चलाई गया खास अभियान रा तहत 1.5 लाख 32 स्कूलों में बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट रो सुबितो दियो चियो। ध्यान योग है कि 5 साल कम उम्र रा बच्चों का आधार में केवल नाम पता और फोटो दर्ज कराया जावे है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 रो ऐलान कर दियो चियो है। इन्हें तेक न्यारा न्यारा खेलना रा 15 खिलाड़ियों ने चोखा खेल रो दर्शाव करण सारू अर्जुन पुरस्कार देर नवाजा चावेला। आम आए महिला बैडमिंटन डबल्स री खास जोड़ी ट्रिसा जॉली और पल्लेला गायत्री गोपीचंद शामिल है। भारत में फुटबॉल रा बेहतरीन खिलाड़ी ईसाया अरुमेनाया गमन रो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम देर मान करियो चावेला। ईसा गई एथलेटिक्स रा कोच परवीर सिंह, मुक्केबाजी रा कोच छोटे लाल यादव और निशानेबाजी रा कोच नेहा नंद कुमार चौहान ने द्रोणाचार्य पुरस्कार दियो चावेला। पुणेरी आर्मी पैरालंपिक नोड ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सारू चुनी चियो है। नई दिल्ली में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप रा एकल मुकाबला में आज भारत रा लक्ष्य सेन रो मुकाबलो ऑस्ट्रिया रा कॉलिन्स वेलेंटाइन फिलिमोन भेटियो है। इन पहली महिला एकल मुकाबला में भारत री उन्नति हुडा म्यांमार री थेट्टार ने 22-20, 21-16 शिकस्त दीनी। महिला डबल्स रा एक मुकाबला में भारत री सिमरन सिंघी और कवि प्रिया सेल्वम री जोड़ी बुल्गारिया री स्टेफनी स्टोवा और ग्रेबियरला स्टोवा री जोड़ियों 21-7, 21-14 हार गई। आज ही व्या महिला डबल्स रा एक और मुकाबला में भारत री ट्रिसा चौली और पल्लेला गायत्री गोपीचंद री जोड़ी अमरीका री लॉरेन लेम और एलिसन ली री जोड़ी ने 21-15, 21-12 शिकस्त दीनी। मिक्स्ड डबल्स में भारत रा असित सूर्या और अमृता प्रमुथेश री जोड़ी ने तुर्की री जास्मीन बेगताज और एमरे सोमेंस री जोड़ियों 21-16, 29-30, 22-24 हार रोसा मौकण नुपड़ियो। मिक्स्ड डबल्स रा एक और मुकाबला में भारत री रुत्विका गड्डे और रोहन कपूर री जोड़ी ने कनाडा रा जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई री जोड़ियों 20-22, 21-19, 21-17 शिकस्त मिली। दूजी कानी श्रीलंका रा कोलंबो में भारत और श्रीलंका बीच चल रहा क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत पकड़ मजबूत कर लेनी है। श्रीलंका ने मैच जीतन सारू काल आखिरी दिन 288 रन और बनावना फैला जबकि हमारा 4 बल्लेबाज 84 रन बनार आउट फेंकिया है। आज मैच रा चौथा दिन भारतीय टीम दूजी पारी में 193 रन बनार आउट फेंकी जिन पाछे श्रीलंका ने मैच जीतन सारू 372 रन बनावन रो लक्ष्य मिल्यो। भारत पहली पारी में 462 रन बनाया है। प्रदेश में ई मित्र व्हाट्सएप माथे मुहैया कराई जा रही सरकारी सेवाओं की तादाद 51-103 करती रिची है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आयुक्त हिमांशु गुप्ता बतायो कि ई मित्र व्हाट्सएप के जरिए हाल ताई 232,032 लोग सरकारी सेवाओं रो फायदो घर बैठे ही ले चुका है। इन सारू व्हाट्सएप नंबर 9461062705 माथे संपर्क करियो जा सके है। नंबर ओजो सुन ले रहा हूँ 9461062705। ब्रिक्स देशां रा पर्यावरण मंत्रियां रो सम्मेलन आज नई दिल्ली में रखी चियो। सम्मेलन री सदारत करता थका केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव इंसानियत रो खास ध्यान रखता थका लगातार विकास सारू नीति प्रौद्योगिकी और जनतारी भागीदारी रो तालमेल बिठावण माथे जोर दीनो। श्री यादव ब्रिक्स सदस्य देशां रा नुमाइंदा दलां रा मुखियां सागे ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह री ओर बनाई जा 4 ज्ञान संकल्पां रो अनावरण कीनो। आमाए ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह री ओर करी जा रचनात्मक विचार विमर्श नई शामिल करी चियो है। श्री यादव बतायो कि साल 2005-2022 रे दौरान भारत माए प्रदूषण माए 37% बत्ती कमी आई। आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ली रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर 2,340 करोड़ रुपए रा खर्च वाला विकास रा 941 कामारी नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 20 अगस्त शुरू होवन वाला मानसून सत्र पहली आज सगली पार्टियां ना नेतावां री मीटिंग बुलाई सदन चलावण में सकारात्मक भूमिका री अरज कीनी। राज्य में काल 10 जिला सारू बरसात रो येलो अलर्ट जारी करी चियो।
और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 रो ऐलान।

0: 15 खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार देर नवाजा जावेला। इंसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार
1: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 7 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगला श्रोतावान है, आशादा भाई का घना घना राम राम, और महेश भाई आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
7: राम राम आशा जी आपने, और जो अपना काश्तकार भाई लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं किसान वाणी, बाने भी घनी मोकली राम राम। और आशा जी कहीं हाल चाल बढ़िया?
6: हाल चाल बढ़िया है सा। और देखो आज बात करे ना किसान वाणी कार्यक्रम में, और बात किसाना से जुड़ी ही हुए तो और भी बहुत बढ़िया। तो देखो सा, बरसात को मौसम चल रही है, और ई मौसम के मायने थोड़ी सी अगर सावचेती अपना काश्तकार भाई किसान भाई बरत लेवे तो मोटो मोटो फायदो आने हो जावे छे। क्योंकि बरसात को मौसम छे, ई मौसम में इंदर राजा कद मेहरबान हो जावे कद रूस जावे यो तो आपने पतो को ने, पर हाँ सावचेती राखबो आपनो काम छे ताकि आप अपनी फसल ने सुरक्षित राख सका और वासी चोखो उत्पादन ले सका। अब मान लो एकदम सु बरसात बरस रही है 2-4 दिन तानी लगातार, तो सावचेती यही राखनी चाहिए कि आपा अपने खेत में जल निकास की जो व्यवस्था है उन्हें अच्छी तरह से ध्यान में रखा कि आपने खेत में पानी को जमाव या भराव न होवे, क्योंकि सीधो सीधो फसला ने प्रभावित कर लो। दूसरी मोटी बात यह भी ध्यान रखो सा कि ई टाइम ही आपकी फसला की बढ़वार हो रही है, तो आपके फसलों की बढ़वार के साथ साथ ही उनको सुरक्षा को भी पूरो पूरो ध्यान रखोला। ई ताई मेड़बंदी अच्छी तरह से करो, साथ ही साथ हो सके तो तारबंदी कर लो ताकि सुरक्षित उत्पादन आपका घर तक पहुंच सके। और महेश भाई एक बात को और ध्यान देना है, वो या कि ई मौसम के मायने खरपतवार भी तेजी से बढ़े छे, और पशुओं जो अपनी फसला छे वहां का जो पोषक तत्व छे वहां अवशोषित कर लेवे छे, तो बढ़वार कम हुए छे, गुणवत्ता में फर्क पड़े छे। ई ताई खरपतवार नियंत्रण भी घणो घणो जरूरी छे।
7: खरपतवार ने भी निकालनी है, और जी अबारा बताया कि भी खेत कमाए पानी को जमा हो गया है, पानी ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, भी फसल गड़बड़ने लग जाए तो भी पानी के निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, और पानी तेजी से बह के आ रहे हैं तेज बारिश कमाए तो आसान न हो कि भी खेत की माटी भी पानी के साथ में बह के बाहर चले जावे, तो खेत की थोड़ी सी पक्की मेड़बंदी किसान भाई करा ली, और साथ में देखो फसल जब थोड़ी बड़ी होने लग जाए तो जब आवारा पशु ही बासी फसल ने खतरा हो तो खेत की सुरक्षा के लिए तारबंदी और मेड़बंदी जरूरी है। तो किसान भाई ये को भी ध्यान रखें। और अब देखो आपने ये कार्यक्रम कमाए, देखो जो जानकारी है खास वह है फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरक और जैव उर्वरकों को महत्व

0: जानकारी देसी डॉक्टर कमलेश शर्मा और आपसे जानकारी ले रही हैं अनीता बहन, तो दिरावा किसान बहन है जानकारी।
1: बिल्कुल सर, किसान वाणी सुनबावाड़ा सभी किसान बहन है अनीता की घनी घनी राम राम सा। श्रोतावा, किसान वाणी में हमेशा ही मैं आपके लिए नई नई जानकारियां ले रहा चा, यही आज की जानकारी ले रहा चा आपके लिए फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरक और जैव उर्वरक का महत्व का बारा में। ई विषय पर जानकारी देबा के लिए आज अपना स्टूडियो में पधारा चाहे डॉक्टर कमलेश शर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर में आप विराजे छे। डॉक्टर कमलेश शर्मा जी, आपको कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत छे। राम राम सा।
2: राम राम सा।
1: तो सबसे पहली मैं आपसे यही जानवो चाहला जी, आप फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरक को काही महत्व छे?
2: देखिए किसान भाइयों, फसल उत्पादन में जल विलय उर्वरकों का बहुत बड़ा महत्व है
1: जी।
2: सबसे पहला महत्व तो यही है कि जो हमारे पोषक तत्व फसलों को चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कुछ सूक्ष्म तत्व भी जैसे जिंक, आयरन, बोरोन, ये सभी हम जल विलय उर्वरकों के माध्यम से फसलों को पहुंचा देते हैं और फसलें उन पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर लेती है। दूसरा महत्व यह है कि इन उर्वरकों के द्वारा पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ती है
1: जी।
2: यानी कि वो पोषक तत्व जो है जितना हम जल विलय उर्वरकों में डाल के देते हैं उसमें से अच्छी मात्रा में पौधे उनका अवशोषण कर सकते हैं। इसके बाद में फर्टिगेशन का उपयोग करके हम जो है इन जल विलय उर्वरकों को फसलों को देते हैं। फर्टिगेशन का अर्थ है कि सिंचाई के जल के साथ में इन जल विलय उर्वरकों को मिला करके और फसलों को देते हैं, उससे वो आसानी से फसलें उनको ग्रहण कर लेती है। इसके बाद में इन जल विलय उर्वरकों का ये भी महत्व है कि ये फसल की वृद्धि एवं उत्पादन में वृद्धि करते हैं, क्योंकि समय समय पर हम सिंचाई करते हैं और समय समय पर सिंचाई के साथ साथ ही हम जब इनको मिला के देते हैं तो वो उर्वरकों की आवश्यकता, उन पोषक तत्वों की आवश्यकता फसलों को पूर्ति होती रहती है
1: जी।
2: इस वजह से उसके उत्पादन में वृद्धि होती है और उस पौधों की बढ़वार भी होती है
1: जी।
2: इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मृदा में पोषक तत्वों का समान रूप से वितरण होता है, क्योंकि जैसे हम ऐसे छिड़काव करके डालते हैं तो वो कहीं कम गिर जाता है और कहीं ज्यादा गिर जाता है, लेकिन जब हम जल विलय पानी में मिलाकर के उस यूरिया को डालते हैं तो वो आसानी से पूरे एक समान रूप से फसलों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं
1: जी।
2: तो यह भी इसका बहुत महत्व है। फिर महत्व है कि हमारे समय की बचत होती है और लेबर की बचत होती है। इस प्रकार इसके आगे के इसका महत्व की बात करें, ये जो सब्जियां हैं, फल है, फूल है, बागवानी की फसलें हैं, इन सभी में जल विलय उर्वरकों को आसानी से उनके जब आवश्यकता हो
1: जी
2: तब हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं। और क्योंकि फसल का समय लंबा होता है तो उसमें बीच बीच में पोषक तत्वों की पूर्ति करना आवश्यक होता है, तो सिंचाई के साथ में इन जल विलय उर्वरकों को हम आसानी से दे सकते हैं
1: जी। सर आप बात कर रहे हैं भाई जल विलय उर्वरक का महत्व का बारे में, पर सर अब यह बताओ भाई जल विलय उर्वरक का प्रयोग अगर अपना किसान भाई कर रहा है तो वन इको काई लाभ होलो?
2: देखिए जल विलय उर्वरकों को अगर किसान साथी कर रहे हैं तो लाभ उनको यही होता है कि एक तो पोषक तत्वों की बर्बादी नहीं होती है
1: जी,
2: दूसरा किसान का समय बचता है और किसान की लेबर बचती है, क्योंकि किसान को इन जल विलय उर्वरकों को सिंचाई के पानी के साथ ही देना होता है। इस वजह से उसको लेबर भी बच गई, उसका समय बच गया और जो है उसके पास में जो पोषक तत्वों का जो नुकसान होता था पहले, वो पोषक तत्वों का नुकसान नहीं होगा और संतुलित मात्रा में वो पोषक तत्व उस फसल को प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनका बहुत लाभ मिलता है किसानों को और जल विलय उर्वरकों के यूज से जो है फसल में बढ़वार भी अच्छी होती है।
1: तो सर जी आप ही आपा बात कर रहे हैं जल विलय उर्वरक का बारे में, और अब बात करा जैव उर्वरक की, तो जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर काई हो छे या अपना किसान भाइयों ने बताओ सर?
2: देखो किसान भाइयों, जैव उर्वरक या इसका इंग्लिश में नाम है बायो फर्टिलाइजर
1: जी।
2: तो जैसा कि नाम ही बता रहा है जैव उर्वरक,

0: यानी इसमें कुछ जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराना, इस प्रकार के जीवों को जैव उर्वरक कहते हैं या बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। इनका भी बहुत महत्व है। इसमें बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर्स जो आज हमारे पास उपलब्ध हैं, उसमें से मैं आपके सामने कुछ नाम बता रहा हूं, जैसे राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, एजोस्पर्लम है, फास्फेट घुलनशील जीवाणु है और माइकोराइजा है। ये कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये भी ये फसलों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
0: अब मैं जैसे आपके बात कहूँ राइजोबियम की, यह एक जैव उर्वरक है। यह राइजोबियम है जो दलहनी फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये दलहनी फसलों में प्रयोग करने से मिट्टी में ये नाइट्रोजन की मात्रा को जमा करते हैं और फिर वो नाइट्रोजन पौधे द्वारा अवशोषण कर ली जाती है
1: जी।
0: उसी प्रकार से एजेटोबैक्टर है, ये अनाज वाली फसलों में इनका प्रयोग किया जाता है और ये भी जो है नाइट्रोजन को फसलों को देते हैं। तो इस प्रकार से बायो फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अब आज जब हम संतुलित उर्वरक देने की बात करते हैं तो उसमें बायो फर्टिलाइजर भी एक मुख्य अंश है। इस प्रकार से हमको अब बायो फर्टिलाइजर्स का यूज धीरे धीरे ज्यादा करना चाहिए।
1: तो जी कि आप बात कर रहे हैं भाई जैव उर्वरक का ही हो, चाहे आप बहुत सारा जैव उर्वरक की बात भी करी, तो ये फसल में की तरीका से मदद करे छे बढ़वार में?
0: देखिए किसान साथियों, जैसा कि अभी अनिता मैडम ने पूछा कि ये जैव उर्वरक किस प्रकार से फसल उत्पादन में मदद करते हैं, तो अब देखो जब वायुमंडल की नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में है, उस वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये पहले मिट्टी में जमा करते हैं और मिट्टी में जमा करके फिर ये पौधों की जड़ों द्वारा उस नाइट्रोजन को पौधे शोषण कर लेते हैं
1: जी।
0: तो इस प्रकार से ये तो एक एग्जांपल है आपके एजेटोबैक्टर का। उसी प्रकार जो मैंने बताया आपके राइजोबियम, ये जीवाणु खाद है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर है। ये राइजोबियम क्या करता है कि जो दलहनी फसलें होती है उन दलहनी फसलों में वायुमंडल के नाइट्रोजन को ग्रहण करके और पौधे की जड़ों में ये फिक्स कर देते हैं और फिर पौधे उसको अवशोषण कर लेते हैं और उससे पौधों की लगभग इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स यूज करने से 20-25% पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार इसका सभी फसलों में, ये दलहनी फसलें हो चाहे अनाज वाली फसलें हो चाहे दूसरी फसलें हो, उनमें सब में ही बायो फर्टिलाइजर का या जैव उर्वरकों का हमको इस्तेमाल करना चाहिए
1: जी। तो सर जी आप जैव उर्वरक की बात कर रहे छा, तो कहीं रासायनिक उर्वरक को पूरा विकल्प से जैव उर्वरक यो मान सके छे अपना किसान भाई?
0: नहीं मैडम, रासायनिक उर्वरकों का विकल्प नहीं है
1: जी।
0: रासायनिक उर्वरकों का ये विकल्प नहीं है क्योंकि रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया है, डीएपी है, म्यूरेटा पोटास है, या दूसरे सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो उसमें फेरस सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, वो अलग तत्व देते हैं फसलों को। लेकिन जो जैव उर्वरक है वो तो उसमें तो जीव है, वो तो हमारे पौधों को वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके और जमीन में फिक्स करते हैं और फिर उसके माध्यम से पौधे की जड़ों द्वारा वो अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये जरूर बात है कि जैव उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के साथ मिला करके भी दे सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे जैव उर्वरकों में हम पहले तो मुख्य रूप से ये होता है कि बीज का सीड ट्रीटमेंट करके भी उसको दे सकते हैं, है ना, जिसमें राइजोबियम भी है। ये जो बायो फर्टिलाइजर है वो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है। अगर हम उसको देना चाहते हैं तो बायो फर्टिलाइजर को सीड ट्रीटमेंट करके और फिर हम देते हैं, और अगर सीड ट्रीटमेंट नहीं करना है और आपको वैसे ही डालना है मिट्टी में, मृदा में, तो 5-6 किलोग्राम जो बायो फर्टिलाइजर है प्रति हेक्टर के हिसाब से वो भी हम उसमें जमीन में डाल करके भी और बायो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इसका मतलब यह हुआ कि बायो फर्टिलाइजर और जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर है वो दोनों ही दे सकते हैं, उनका विकल्प नहीं है।
1: तो सर जी अपना किसान भाई जैव उर्वरक ने काम में ले रहा है तो कहीं या काम में लेती टाइम भी कैसी बातों को ध्यान रखनी चाहिए।
0: देखिए जैव उर्वरकों को काम में लेने के टाइम पर

0: बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। जैसे पहली बात तो यह है कि इन जैव उर्वरकों को हमको धूप में अत्यधिक गर्मी से बचा के रखना चाहिए
1: जी।
0: क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जैव उर्वरकों में जीव होता है, तो इनको जिस प्रकार जीव का एक सामान्य तापमान में इनको रखा जाता है, बहुत अगर इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में रखेंगे तो उसमें आदि जीव नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इसको छाया में रखा जाता है और छाया में रख करके सामान्य तापमान पर रखें। और इसको जो है एक यूज करने का तरीका है कि किस प्रकार से इनको मिला करके और फिर फसलों के जो हमारे बीज होते हैं उन बीज के ऊपर इनको सीड ट्रीटमेंट करके ही किया जाता है। और अगर मिट्टी में डालना है तो मिट्टी में भी इनको डाला जाता है, तो इनके डालने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और अब आज के समय में तो जैव उर्वरकों का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, क्योंकि हमारी जो मिट्टियां है, हमारी मृदा है जिसको हम धरती माता बोलते हैं, वो धरती माता का इतना दुरुपयोग हो गया है, इतना अवशोषण हो गया है या इतने रासायनिक तत्व डाल दिए गए हैं कि वो ज़मीनें ही अब धीरे धीरे बंजर बनती जा रही है
1: जी।
0: और उसमें जैव मात्र चीज बहुत कम रह गई है। तो इस बंजरता से बचाने के लिए हमारे को अब मिट्टी में जैव उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी मिट्टी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी
1: जी।
0: इसको बचाने के लिए अब ज्यादा से ज्यादा जैव उर्वरकों का हमारे को इस्तेमाल करना पड़ेगा।
1: श्रोतावा किसानवाणी में आज अपने जानकारी देवा के लिए डॉक्टर कमलेश शर्मा प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान कृषि महाविद्यालय जोबनेर से पधारा छे और आपने जानकारी दे रहा छे फसल उत्पादन में जल विले उर्वरक और जैव उर्वरक का महत्व के बारे में। और अभी आप यहाँ से बहुत सारी चीजा जाने भाई किया जल विले उर्वरक को उपयोग कर सका छा और जैव उर्वरक को फसल उत्पादन में कत्तो महत्व छे। तो डॉक्टर कमलेश शर्मा आपसे आगे या जानवो चाहला भाई किसाना ने जैव उर्वरक को उपयोग करती टाइम जो अभी आपा बाता जाना कि भाई कैसी कैसी बात को ध्यान रखनी चाहिए, पर आगे या जानवो चाहला भाई जल विले और जैव उर्वरक ने अपना पास है खेती में अपना किसान भाई ने कितो लाभ हो सके छे।
0: देखिए किसान साथियों, अभी मैडम ने पूछा है कि जल विले उर्वरक और जैव उर्वरकों को अपनाने से खेती में कितना लाभ हो सकता है। तो ये जो लाभ की बात है, ये दोनों ही बहुत लाभ देते हैं, चाहे जल विले उर्वरक हो और जैव उर्वरक हो
1: जी।
0: तो इनसे सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि अच्छा आपके उर्वरकों की उपयोग दक्षता बढ़ती है, फसल की अच्छी वृद्धि होती है
1: जी,
0: बेहतर उत्पादन होता है और साथ साथ में जो हमारी धरती माता है उसमें भी उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है
1: जी।
0: क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वर्षों से हम देखते आ रहे हैं किसान साथियों कि हम सब या तो यूरिया डालते हैं या डीएपी डालते हैं और इस वजह से वो जो रासायनिक तत्व है वो उस मिट्टी में चला जाता है। हर साल हर वर्ष हर सीजन में किसान डालता है इस प्रकार के रासायनिक तत्व रासायनिक उर्वरक, उससे मृदा की जैविक क्षमता बहुत कम हो गई है। तो उसको बनाए रखने के लिए और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि अब हम जल विले उर्वरकों का प्रयोग करें और जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। क्योंकि एक उदाहरण मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि हमने टेस्ट किया है कि जैसे पंजाब की मृदाओं के बारे में हमने जांचा देखा कि पंजाब की मृदाओं में बहुत ज्यादा मात्रा में रासायनिक तत्व पाए गए हैं जो कि बहुत नुकसानदायक हैं और बहुत नुकसानदायक के साथ साथ में वो रासायनिक तत्व जो है हमारी फसलों के द्वारा अवशोषण कर लिए जाते हैं और उस अवशोषण से वो केमिकल ज्यादा आने की वजह से वो फसलें भी फसलों की जो अनाज उत्पादन होता है या फल उत्पादन होता है या सब्जियां उत्पादन होती है उनमें भी वो रासायनिक तत्व ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं। उसकी वजह से इस प्रकार के ज्यादा रासायनिक तत्वों के अनाजों को सब्जियों को फलों को उपयोग करने से मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मानव स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए और सभी हमारी धरती को अच्छा करने के लिए हमारे वायुमंडल को अच्छा करने के लिए ये आवश्यक हो गया है कि हम सभी किसान भाई मिलकर के बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हर फसल में हर सीजन में करें ताकि हमारी धरती की उर्वरकता क्षमता बढ़े और फसलों का

0: उत्पादन भी बढ़े।
1: जी श्रोताओं, किसानवाड़ी में जानकारी देवा के लिए आज अपने साथ छा डॉक्टर कमलेश शर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर से आप पधार्या। कार्यक्रम में समय निकाल रहा आया और इतनी बेहतर तरीका से जैव उर्वरक और जल विलय उर्वरक का बारे में किसान भाइयों ने बताया, इसके लिए आपको घनो घनो धन्यवाद। राम राम सा।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: हाँ तो आशा जी,
6: जी
5: भाई, फसल उत्पादन का माये जल विलय उर्वरक और जैव उर्वरक को महत्व, ये विषय पर बहुत चुकी जानकारी दी डॉक्टर कमलेश शर्मा, प्रोफेसर मृदा विज्ञान कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से आया, और किसान भाई ने अति चौकी और उपयोगी जानकारी दी, और अनिता बहन अति चौकी और उपयोगी जानकारी किसान भाई के वास्ते आंसू दिलाई। तो चौकी सी जानकारी के बाद अब क्यों ना अपना जगह किसान भाई ही बने, एक चौको सो लोकगीत सुना दिया।
6: बिल्कुल सा, तो आओ सा सगला ही मिलर सुनायो गीत।

0: गीत तो बहुत ही चौकसू रहा है ऐसा।
1: संतोष पारी की आवाज में चौकसो लोकगीत हो मोरिया, और बिल्कुल मोरिया बोलगा साहब। अब देखो आपा किसान बहन है, कुछ मंडी का भाव बता देवा
0: बिल्कुल
1: जाबा से
0: सर।
1: पहले, है ना। तो बस्सी की जो मंडी है वो कमाए सरसों को अधिकतम भाव रहे हो 8,050 रुपया। बस्सी की मंडी में ही तारा मीरा को अधिकतम भाव रहे हो 5,700 रुपया।
0: प्रति
1: जयपुर
0: किलो।
1: की फल सब्जी मंडी की बात करें तो हरी मिर्च का अधिकतम भाव रहा 4,000 रुपया। टोंक की मंडी की बात करें तो टोंक की मंडी में जीरे का अधिकतम भाव रहा 16,000 रुपया प्रति क्विंटल। टोंक की ही मंडी में सौंफ का अधिकतम भाव रहा 8,500 रुपया। टोंक की मंडी में सरसों का अधिकतम भाव रहा 8,250 रुपया प्रति क्विंटल। और कोटा की जो मंडी है इकमाए लहसुन को अधिकतम भाव रहे हो 15,000 रुपया प्रति क्विंटल। और मौसम की बात करा तो पासला 24 घंटा का माए जयपुर को न्यूनतम तापमान रहे हो 27 डिग्री, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस। अगले 24 घंटा का माए जयपुर को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रेबा की। और प्रदेश के माए कटे कटे में छांट हो सके है, कटे बादल रह सके, यह है मौसम की संभावना। बरसात को मौसम है तो भी देखो मैं कोई भी टाइम बरस का है।
0: बिल्कुल, तो सावचेती राखनी बहुत जरूरी छे। और जिया कि आपने मंडी भाव बताया, तो मंडी का भाव ने ध्यान में रखता हुए ही आपकी फसल की खरीदान और बेचान भी आपने करनी चाहिए, ताकि आपने आपकी मेहनत को पूरो पूरो फायदो मिल सके। और बरसात का मौसम में जो सावधानियां रखनी चाहिए काश्तकार भाया, चाहे वे अपने खेती बाड़ी के लिए होवे या और कोई चीज के लिए, तो वो आपने जरूर रखनी चाहिए। और कार्यक्रम में जब आप बात करा चाह कि मौसम की और खेती के जो आदान चिया की या ई तई करा चाह, ताकि आपने आपकी मेहनत को पूरा फायदो मिल सके। और अब स्टूडियो की घड़ी इशारों कर रही है कि आज को जी को कार्यक्रम चे किसान वाणी
1: बिल्कुल।
0: को टाइम पूरा हो तो जा रहे जाए, तो
1: तो
0: श्रोतावा दिराव आज्ञा आशा ने।
1: और महेश भाई ने दियो आज्ञा, राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित ये कार्यक्रम श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
3: जी।
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
3: श्रोताओं आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी।
3: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी।
3: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
3: जी।
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
2: जी।
3: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
2: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
3: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
2: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
3: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
2: जी।
3: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
2: जी।
3: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
2: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी

0: उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
1: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
0: जी
1: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
0: जी,
1: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
0: इसका संबंध खानपान से है।
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
1: इसका संबंध खानपान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: अश्रोताओ, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
1: पंडित बिरजू महाराज।
2: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
3: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
2: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
3: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था, इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
2: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और

0: नृत्य का वातावरण मिला। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 वर्ष की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए। प्रणाम पिताजी।
2: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
1: लेकिन क्या पिताजी?
2: बेटा कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
1: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
2: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
1: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
2: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
1: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
2: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
1: जी पिताजी।
3: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
0: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे। आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
5: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है। और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाइज अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा है और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ। सब लोग रियाज कर रहे हैं तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें, अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
4: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
5: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम, सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा, अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था। अम्मा कहती थी, बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा समझेगा। तो कहे, अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया, और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे, 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा, बाबू मैं, अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो। अम्मा कह लेगा, मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान

0: साल पांच साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीजों को?
1: अरे उनको बड़े मजे में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथेता ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथेही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? कहना हाँ खाते हैं। पूड़ी खाते हो? हाँ खाते हैं। तो
2: सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी तीन मात्रा, पूड़ी दो मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
0: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
3: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए। उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
4: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
3: सत्रह जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
5: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
6: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
7: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
6: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
8: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
5: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
9: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
5: भगत सिंह।
10: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
11: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।

0: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
1: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
2: कौन है?
3: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
2: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहां चले गए थे तुम?
3: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
2: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
3: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
2: ये इस शीशी में क्या है?
3: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
2: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
3: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
2: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
3: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
0: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
1: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
3: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
4: वो तो ठीक है भगत सिंह,

0: बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
1: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
2: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
3: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। श्रोताओं, ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। जल ही जीवन है, इसका दुरुपयोग रोकिए, सदुपयोग कीजिए।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 8 बजे है, लीजिए सुनिए एल्बम सॉन्ग।

अभी आप सुन रहे थे कैलाश खेर को एल्बम ए खुदा में। लीजिए सुनिए सोनू निगम के स्वर में ये अगली प्रस्तुति। एल्बम का नाम है जान।

7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एल्बम सॉन्ग। लीजिए सुनिए शमीक डाबर के स्वर में एल्बम सॉन्ग की अगली और आखिरी पेशकश। एल्बम का नाम है मोहब्बत कर ले।

ก็แล้ว

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी, वो ख्वाब है या हकीकत है।

अभी आप सुन रहे थे एल्बम सॉन्ग। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर।

जी हाँ श्रोताओं, घूमर कार्यक्रम में आप सुनते हैं हर बार नए कलेवर से युक्त राजस्थान की कल्चर के, संस्कृति के रचे बचे गाने, जिसमें होती है यहाँ के खान पान, यहाँ की मिट्टी की सौंधी खुशबू, और होते हैं तीर्थ त्योहार से जुड़े कुछ गीत। ये है लोक संस्कृति का पहला गीत सीमा मिश्रा के स्वर में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और

0: अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए सुनिए मुकेश और साथियों के स्वर में ये अगली लोक प्रस्तुति कार्यक्रम घूमर में।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति सीमा मिश्रा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम घूमर। थोड़ा सा आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय

0: चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
3: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग जाने गए हैं वहां और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहां हताहत

0: हुए, उसके अलावे बहुत लोग को इंजरीज भी आई है, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है, और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप हैं। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए एक महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
3: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में

0: की नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन की विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों की मंत्री वारसेन अगा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुड्डा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनेलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल अम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्रीय कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुस जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमरीका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर श्रोताओं, यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमिर चैनल। लीजिए सुनिए सुगम संगीत।

खत है कि विकृत का विकासावन है ये। यह सुगम संगीत की पहली पेशकश तलत अजीज के स्वर में।

हुस्न की शोखियां तो देखो जरा, गाए शोला है गाए शबनम है, हम तुम्हारे हैं ये क्या कम है। तुम हमारे नहीं तो क्या गम है। लीजिए सुनिए जगजीत सिंह के स्वर में ये अगली प्रस्तुति।

कोई मौसम हो तेरे रंग में ढल जाऊंगा, मैं कोई वक्त नहीं कि बदल जाऊंगा। लीजिए सुनिए सुगम संगीत की अगली और आखिरी पेशकश में हरिहरन के स्वर में ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए सुनिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम।
1: रुपहले पर्दे की एक अभिनेता,
2: वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि हाँ। तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूँ और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, तो वो बड़ा मजेदार सीन है। वो
1: जिन्हें है रेडियो से बेशुमार प्यार,
2: कह सकता हूँ मैं कि रेडियो मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरी नानी माँ का घर था जहाँ बिजली भी नहीं थी, सुबह 6 बजे से उनके घर में वो रेडियो शुरू हो जाता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो रेडियो जब खराब हुआ तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया।
1: एक कहानी जिसमें है संघर्ष और जिद।
2: राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती।
1: अभिनेता आलोक गागडेकर।

0: बॉम्बे टॉकीज 22 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए आशा भोसले की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।
2: अरे अरे अरे रुक जा।

साथियों, अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज में वो नखमा जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत था सचिन देव बर्मन का। फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, तर्ज है शंकर जयकिशन की। फिल्म का नाम है असली नकली।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
3: कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं आशा भोसले मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है श्री 420।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज

0: जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

एक अभिनेत्री जिसने मॉडलिंग की दुनिया से आकर फिल्मों में अपनी एक ऐसी लकीर खींची जिससे उनके चाहने वालों की एक लंबी फेहरिस्त बनी।

1970 को हुआ था। मनीषा के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। मनीषा कोइराला का परिवार नेपाल की राजनीति से जुड़ा रहा है। मनीषा के पिता का नाम प्रकाश कोइराला और माँ का नाम सुषमा कोइराला है। इनके भाई सिद्धार्थ कोइराला बॉलीवुड में अभिनेता हैं। उन्हें अपने परिवार के संस्कार विरासत में मिले, इसलिए हमेशा उनकी नजर गरीबों और पीड़ितों पर रही। उनके लिए मदद करने का जज्बा मनीषा के भीतर हमेशा से रहा है।

मनीषा कोइराला लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में रही, जहां उन्होंने वसंत कन्या महाविद्यालय में 10वीं तक पढ़ाई की। जब उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी और फिर उनकी छुट्टियां शुरू हुई, तो इस दौरान उन्होंने शौक शौक में एक नेपाली फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था फिरी भेटौला। ये साल 1989 की बात है। मजेदार बात यह है कि तब तक मनीषा का फिल्मों में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। इस सपने को लेकर वो आ गई दिल्ली और उन्होंने धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया। जब तक मनीषा बनारस में थी, वो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी, पर दिल्ली में अकेले रहने की वजह से वो काफी मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई। उनके भीतर का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया।

अजीब इत्तेफाक हुआ। यहाँ उन्हें मॉडलिंग के असाइनमेंट मिलने लगे और इस तरह अभिनय की लौ उनके भीतर जल उठी। बस फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि उस शहर चले जो अभिनय का गढ़ है। वो चली आई समंदर के किनारे वाले शहर यानी माया नगरी मुंबई में।

मुंबई में अपने हिस्से का संघर्ष करने के बाद मनीषा कोइराला को आखिरकार एक बड़ा मौका तब मिला जब जाने माने निर्देशक शोमैन सुभाष घई ने उन्हें अपनी फिल्म सौदागर के लिए साइन किया।

पूरे फिल्म उद्योग में सनसनी सी फैल गई कि नेपाल से आई एक नई अभिनेत्री सुभाष घई जैसे बड़े निर्देशक की निगहबारी में फिल्मों में काम कर रही है। इस फिल्म में काम करना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि सुभाष घई अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ लेकर आ रहे थे। इतने विराट अभिनेताओं के बीच अपनी पहचान बनाने की चुनौती थी मनीषा के सामने।

इसके बाद 1992 में आई फिल्म यलगार। इसके बाद आई फिल्म अनमोल और धनवान, जो कोई खास कमाल न कर सकी फिल्मी पर्दे पर। ऐसा लगा मानो मनीषा कोइराला समय की धुंध में खो जाएंगी। इसी बीच निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए चुना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित इस फिल्म में उन्होंने रज्जू का किरदार निभाया। मनीषा कोइराला के सामने अपने आप को साबित करने की बड़ी चुनौती थी। ये वो दौर था जब पहले स्क्रीन टेस्ट के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने कहा, मनीषा पूरी तरह से गैर अभिनेत्री हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें मनीषा की प्रतिभा पर यकीन हो गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन भी मिला।

सन 1995 में मनीषा कोइराला ने मणिरत्नम के साथ फिल्म बॉम्बे में काम किया। उनके हीरो थे अरविंद स्वामी। इस फिल्म के लिए मनीषा कोइराला को मिला फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड।

इसके बाद सन 1995 में आई फिल्म अकेले हम अकेले तुम, जिसमें उनके हीरो थे आमिर खान। एक बार फिर उन्हें मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन। राज

सन 1996 में मनीषा कोइराला ने फिल्म मझधार में काम किया, जिसमें हीरो थे सलमान खान। सन 1996 में ही शंकर की फिल्म आई हिंदुस्तानी, जिसमें नजर आई मनीषा कोइराला। साल 1996 उनके लिए एक सुनहरा साल बन गया, जब आई संजय लीला भंसाली की निर्देशित फिल्म खामोशी द म्यूजिकल।

इस फिल्म में मनीषा ने मूक बधिर माता पिता की एक संवेदनशील बेटी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में हीरो थे सलमान खान। ये फिल्म मनीषा कोइराला के फिल्मी किताब में सुनहरे पन्नों की तरह दर्ज हो गई। वे टॉप लीडिंग हीरोइन बन गई।

0: फिल्म में उनके अभिनय की बड़ी सराहना हुई। अपने मूक बधिर माता पिता के साथ उन्होंने अपने आँखों से अभिनय किया। उनके चेहरे के जज्बात संवाद बोलते नजर आए।
1: ये

सन 1998 में एक बार फिर उन्होंने मणिरत्नम के साथ काम किया। इस बार आई फिल्म दिल से, जिसमें हीरो थे शाहरुख खान। ये फिल्म उनके अभिनय की ऊंचाई थी, उनकी बोलती आँखें, उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे की उदासी ने दर्शकों के दिल को छुआ।

0: उठाए न बली, जो लगाए न लगे और बुझाए न बली।
1: सन 1999 में आई फिल्म कच्चे धागे और फिर आई इंद्र कुमार की फिल्म मन।

0: साल 2002 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी, साल 2003 में आई जयप्रकाश निर्देशित फिल्म मार्केट, साल 2005 अकबर खान की फिल्म आई ताजमहल, जिसमें मनीषा कोइराला ने जहां आरा का किरदार निभाया।
1: हर एक दिल यहां एक दिल तलाश करता है, वफा की, प्यार की मंजिल तलाश करता है। यहां परवाने शमा से करीब होते हैं, हसीन नजरों पे शहजादे शहीद होते हैं। यहां दिल लेने देने की अदा भी हासिल है, यहां के वादे बहुत दिल नशील होते हैं। जो बेकरार करे वो करार कहते हैं, इस बाजार को मीना बाजार कहते हैं।
0: साल 2007 में मनीषा कोइराला ने मनीष झा की फिल्म अनवर में काम किया। ये फिल्म हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रियंवत की कहानी पर आधारित थी। साल 2005 में संगीतम श्रीनिवास राव की फिल्म मुंबई एक्सप्रेस आई, जिसमें हीरो थे कमल हसन। अभिनेता इरफान खान के साथ मनीषा की एक फिल्म आई थी तुलसी मातृदेव भव, साल 2008 में फिल्म आई सिर्फ। साल 2008 में ही उन्होंने जाने माने निर्देशक ऋतुपर्ण घोष के साथ बंगला फिल्म में काम किया, फिल्म थी खेला। साल 2009 में दीप्ति नवल के निर्देशित फिल्म आई दो पैसे की धूप चार आने की बारिश, इस फिल्म में मनीषा कोइराला के अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई। सन 2010 में मलयालम फिल्म आई इलेक्ट्रा, सन 2010 में नेपाली फिल्म धर्मा आई, सन 2012 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म आई भूत रिटर्न, इसके बाद उन्होंने डियर माया फिल्म में काम किया। ओटीटी के लिए मनीषा कोइराला ने सीरीज लस्ट स्टोरीज में अभिनय किया। साल 2018 में राजकुमार हिरानी की फिल्म आई संजू, संजय दत्त की मां बनी मनीषा कोइराला ने अभिनेत्री नरगिस का किरदार निभाया था।

2000 में टीवी शो सवाल 10 करोड़ का, साल 2019 में फिल्म आई प्रस्थानम, साल 2023 में मनीषा कोइराला की फिल्म आई शहजादा।

नवंबर 2012 में मनीषा कोइराला को ओवेरियन कैंसर हो गया। इस बीमारी से वे हार नहीं मानी, उन्होंने बाकायदा इलाज करवाया और इस बीमारी से वे विजेता बनकर निकली।

ऐश्वर्या कोइराला के अभिनय सफर को केवल उनकी खूबसूरती से जोड़कर देखना उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी होगी। मनीषा कोइराला का किरदार और उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने समाज सेवा का भी काम किया। महिलाओं के अधिकारों के लिए वे लगातार लड़ती रही हैं। वे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर भी रही हैं। इन दिनों मनीषा कोइराला मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं में भाषण देकर वे लोगों को प्रेरणा देती हैं। समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं वे।

सन 2015 में नेपाल भूकंप में राहत और सहायता का भी काम उन्होंने किया। वे एक किताब की सहलेखिका भी हैं, जिसका नाम है हील द स्टोरी ऑफ हर बैटल अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर।

हाल ही में मनीषा कोइराला ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में मल्लिका जान की भूमिका निभाई है। इस वेब सीरीज में उन्होंने अपने अभिनय से मल्लिका जान के किरदार को जीवंत कर दिया। इस वेब सीरीज की दर्शकों ने तो सराहना की ही, साथ ही साथ फिल्मी दुनिया के कई मशहूर सितारों ने भी मनीषा के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा की। मनीषा कोइराला की फिल्मी यात्रा आज भी जारी है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अदाकारा मनीषा कोइराला पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं। हमारी आज की ये प्रथम सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह ठीक 8:51 पर हमारी अगली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

10 बज चुके हैं। हमारी आज की ये प्रथम सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह ठीक 8:51 पर हमारी अगली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।